सुप्रभात, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हो रहे हैं। आज का दिन है शनिवार, शक संवत 1948, अषाढ़ माह की 22वीं तिथि और अंग्रेजी वर्ष 2026 की जुलाई माह की 18 तारीख है। और मैं मनाली आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारे आज के इस पहली सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए दिन की शुरुआत करते हैं हिंदी समाचार के साथ। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देव भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया के राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन यूफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉक ओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं हमारे आज के इस पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 6:10 पर हम आनंद लेंगे कार्यक्रम भक्ति गीतों का। 6:30 पर हम सुनेंगे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स। 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर हम जानेंगे आज के दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। 7:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम बीट्स ऑफ हार्ट्स।

8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर हम सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत। 8:30 पर हम सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। सुरों की रंगोली कार्यक्रम का समय रहेगा 8:40 और तत्पश्चात हम सुनेंगे पूर आंचलिक बातोरी, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से सुबह के 9:00।

शो के कार्यक्रमों के तहत सबसे पहले 9:15 पर खेलमा कार्यक्रम में सुनेंगे दोनजलाल खेलमा और उनके साथियों के गाए कुछ खेलमा लोकगीत। 9:25 पर रांखोल कार्यक्रम में सुनेंगे रांखोल भक्ति गीत लिंसी एन रांखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में। 9:35 पर जयंती कार्यक्रम में सुनेंगे देवराम डॉम और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ जयंती भक्ति गीत। और ब्याते कार्यक्रम में हम सुनेंगे सांगी लाल सिंह और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ ब्याते आधुनिक गीत। समय रहेगा 9:45।

सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे मिड डे न्यूज। तत्पश्चात 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 से लेकर शाम 5 बजे तक एक बार फिर हम सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और इसी बीच हर घंटे सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, ये थी हमारे आज के इस पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आज है शनिवार और भक्ति गीतों के कार्यक्रमों में हम आनंद लेंगे शनिदेव महाराज के कुछ प्यारे भजनों का।

श्रोताओं, शनि महाराज के से भजन के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स। और इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे महिलाओं से जुड़े कुछ प्यारे गीत।

दोस्तों, इसे गीत के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम सुनते हैं हमारा आज का पोएम ऑफ द डे।
3: गुड मॉर्निंग, माय नेम इज कसवी शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू रीड पोएम नेम एरियल बुके। Everybody has two eyes bright as star they shine, but their color may be just the same as mine, brown or blue, gray.

0: The crown flower has so many shades, and I am sure you know many lovely gardens where such flower grown children in this great big world are flower in a way. Some are light, some are dark, like a real bouquet. Did you ever stop to think how a fool world be if everybody looks the same? Who would know you from me? Thank you.
1: श्रोताओं, चलिए अब बढ़ते हैं विशेष कार्यक्रम आज के दिन की ओर। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आज के दिन से जुड़ी खास घटनाओं, इतिहास के सुनहरे पन्नों, महान व्यक्तित्वों की जयंती और पुण्यतिथि तथा उन महत्वपूर्ण अवसरों की जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी।

सबसे पहले जानते हैं आज 18 जुलाई के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। सन 1781 में ब्रिटेन के विख्यात खगोलशास्त्री विलियम हर्सल ने आकाशगंगा की वास्तविकता का पता लगाया था। सन 1857 में बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन सन 1872 में ब्रिटेन में चुनाव में गुप्त मतदान अधिनियम आया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत स्वतंत्रता अधिनियम को सन 1947 में ब्रिटेन के सम्राट द्वारा मंजूरी दी गई। सन 1955 में पहली बार परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को व्यावसायिक रूप से बेचा गया था। कैलिफोर्निया में आज ही के दिन साल 1968 में इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। सन 1980 में पुनर्रूप से भारत में निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 ने से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में भेजा गया था। टेलीविजन से पहला रंगीन प्रसारण आज ही के दिन साल 1980 में मद्रास से किया गया था। साल 1994 में ब्राजील ने चौथी बार विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साल 2002 में देश के 12वें राष्ट्रपति चुने गए थे। आज ही के दिन साल 2003 में वाई वेणुगोपाल रेड्डी रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने थे। साल 2012 में किम जोंग उन को आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया था।

अब जानते हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम जिनका आज 18 जुलाई के दिन जन्म तथा निधन हुआ था। सन 1861 में भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गंगुली का जन्म हुआ था। नोबल पुरस्कार सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म आज ही के दिन साल 1918 में हुआ था। साल 1927 में प्रसिद्ध गजल गायक मेहदी हसन का जन्म हुआ था। साल 1935 में कामकोटी पीठ कांजीपुरम तमिलनाडु के शंकराचार्य जगतगुरु श्री जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य का जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक राजेश जोशी का जन्म आज ही के दिन साल 1946 में हुआ था। साल 1982 में हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1996 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदना का जन्म हुआ था। सन 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना पीरू सिंह का निधन हुआ था। साल 2011 में भारतीय शास्त्रीय गायक जगदीश प्रसाद का निधन हुआ था। भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना का निधन आज ही के दिन साल 2012 में हुआ था। साल 2016 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मुबारक बेगम का निधन हुआ था। आज ही के दिन साल 2017 में सुप्रसिद्ध भारतीय कवि सन्मरण कहानीकार उपन्यासकार तथा साहित्य समीक्षक अजीत शंकर चौधरी का निधन हुआ था। साल 2022 को भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गजल गायक भूपिंदर सिंह का निधन हुआ था।

श्रोताओं, आज 18 जुलाई के अवसर पर हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिनका जीवन साहस, समानता, मानवता और शांति का प्रतिशोध है। ये दिन नेल्सन मंडेला की जयंती के साथ साथ नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की ताकि उनके जीवन, संघर्ष और मानवता का के प्रति स्मरण को सम्मान दिया जा सके। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीकी के मवेजो गांव में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रंग भेद की अन्यायपूर्ण व्यवस्था की विरुद्ध संघर्ष करने और समान अधिकारों की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। अपने सिद्धांतों और न्याय की लड़ाई में कभी पीछे ना हटने के कारण उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने प्रतिशोध के बजाय क्षमा, मेल मिलाप और शांति का मार्ग चुना। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीकी में लोकतंत्र की स्थापना हुई और वर्ष 1994 में वे देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अश्वेत राष्ट्रपति बने। मानवता और विश्व शांति के लिए उनके असाधारण योगदान के सम्मान में उन्होंने 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका प्रसिद्ध कथन, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य केवल उनके जीवन को याद करना नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना भी है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन प्रत्येक व्यक्ति से 67 मिनट समाज सेवा करने का आह्वान करता है। ये 67 मिनट मंडेला द्वारा मानवता की सेवा में समर्पित लगभग 67 वर्ष का प्रतीक है। इस विशेष अवसर पर हम समानता, न्याय, करुणा, शांति और मानवता के मूल्यों को अपनाने का संकल्प लें। यही नेल्सन मंडेला के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके सपनों के अनुरूप एक बेहतर, न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में हमारा छोटा सा योगदान भी।

श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ ही हम समाप्त करते हैं आज के दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए हम अब आनंद लेते हैं कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमों के।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गाने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दिल की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है, कभी मुस्कान से भर जाती है तो कभी खामोश होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही चलिए आज के इस बीट्स ऑफ हार्ट्स कार्यक्रम में सुनते हैं दिल से जुड़े कुछ प्यारे नगमे।

हर धड़कन में छिपी होती है एक अनकही दस्तान, दास्तान हर एहसास में बसता है किसी अपने का नाम।

दिल अगर सच्चा हो तो रिश्ते उम्र भर महकते हैं, और मोहब्बत का रंग हर मौसम में चमकते हैं।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम बीट्स ऑफ हार्ट्स। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
5: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
4: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
5: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
4: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में

0: होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
2: वर्किंग टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स,
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
5: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
6: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का हफलॉन्ग केंद्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

दोस्तों, इसी के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से।

0: आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिलीज किए गए थे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलांग केंद्र है।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। दोस्तों, अब समय हो चला है कार्यक्रम सुरों की रंगोली सुनने का, और आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे साधना सरगम की आवाज़ों में उनके गाए हुए कुछ प्यारे गाने।

दोस्तों, साधना सरगम के आवाज़ में आप सुन रहे थे उनके गाए हुए कुछ प्यारे गीत, और इसी के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए कार्यक्रम सुरों की रंगोली। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब बढ़ते हैं समाचार की ओर और सुनते हैं पूर्व आंचलिक बातोरी, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

दोस्तों, खेलमा कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे डॉन जलाल खेलमा और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ खेलमा लोकगीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलांग केंद्र है। चलिए अब रांगखोल कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ रांगखोल भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे लिंसी एन रांगखोल और उनके साथी।

रांखोल कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे लिंसी एंड रांखोल लर्न के साथियों की गाए कुछ रांखोल भक्ति गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए जयंती कार्यक्रम में हम सुनते हैं कुछ जयंती भक्ति गीत देव राम डॉम और उनके साथियों की आवाज़ों में।

दोस्तों जयंती कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे देवराम दौम और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ जयंती भक्ति गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। चलिए ब्याते कार्यक्रम में सुनते हैं सांगी लाल सिंह और उनके साथियों की गाए कुछ ब्याते आधुनिक गीत।

0: ब्याते कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे सांगी लाल सिंह और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ ब्याते आधुनिक गीत, और इसी के साथ ही समाप्त होता है इस सभा के लिए स्थानीय भाषाओं का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके मनोरंजन को जारी रखते हुए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। इसी के साथ मुझे मनाली को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ
2: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी, बस थोड़ी ही देर के बाद।
3: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
4: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पटती बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहाँ से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई और फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले, दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहाँ जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। विज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन विज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने विज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। विज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और विज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूँ तुझे संभाल लूंगा, और विज्जू कूद जाता। विज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुँचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से विज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हों तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

सबसे ज्यादा उछलना विजू को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाश नाश के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता, लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी।

विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पटती नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ

0: आशंकाएं जरूर आई उसके मन में, अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे, टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
1: झूठ।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहाँ काम जोरदार चल निकला, और उससे भी बड़ी बात, उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहाँ भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है चुप्पी से।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त ज़रूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की ज़मीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी, और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी ज़मीन को बेचने के कागजात थे। और उसी ज़मीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहाँ तक पहुँचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो ज़मीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस ज़मीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की विज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर किए कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई।

तर्क नहीं कुतर्क था ये। विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी ज़रूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहाँ से करते? कहाँ से चले थे अज्जू भैया, कहाँ पहुँच गए? और कहाँ से चला था रिश्ता, कहाँ पहुँच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहाँ कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा।

आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया, कुछ जाता है तो कुछ आता भी है। अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा जीवन

भाई हो तो ऐसा ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज है जाने माने पार्श्व गायक भूपिंदर सिंह की याद का दिन और आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चुनिंदा गाने भूपी जी की आवाज में।

हसन कमाल के बोल थे, फिल्म का नाम था एतबार, आशा भोसले और भूपिंदर की आवाजें थी। अब आहिस्ता आहिस्ता और सितारा फिल्मों के गाने।

0: गोपिंदर सिंह की आवाज थी। फिल्म का नाम था सत्या। 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: मैटिनी शो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज मैटिनी शो में हमारे साथ एक बहुत जरूरी मेहमान हैं, शुभजीत मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपकी जो टी शर्ट है उस पर लिखा है जल है तो कल है। अब चूंकि हम रेडियो में बैठे हैं तो मुझे एक दृश्य खींचना होगा ना कि लोगों को पता चले। और आप पानी की दुनिया में काम कर रहे हैं, पर्यावरण की दुनिया में काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो बारिश के दिन हैं इनमें सबसे जरूरी गतिविधि क्या है?
1: देखिए, बारिश भगवान का आशीर्वाद होता है।
0: क्या प्यारी बात बोली आपने।
1: चाहे आप कुछ भी दुनिया का एक्टिविटी हो, कोई भी, रोटी कपड़ा मकान से भी पहले पानी आता है। आप बिना रोटी के थोड़े समय तक रह सकते हैं, बिना कपड़े के तो आराम से रह सकते हैं, बिना मकान के रह सकते हैं, बिना पानी के 4 घंटा नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई घर में आता है, दुश्मन भी हो, पानी हम जरूर पूछते हैं।
0: बिल्कुल,
1: खाने के बारे में नहीं बात करते हैं। तो सबसे पहले पानी है। जो भी गतिविधियां हैं दुनिया में, जो भी हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि पानी को एक विशेषता दिया जाए, पानी के बारे में चर्चा हो और हर इंसान को पता हो कि पानी प्रथम है, पहला टॉपिक शुड बी वाटर। तो इसलिए इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जो लाइफ लॉन्ग काम कर रहा था, मैंने ये रियलाइज़ किया हूँ कि हर चीज़ पानी से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि पानी नहीं था इसलिए मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा था। और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हर काम अच्छे से होता है। हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर सर्विसेज पानी के बिना नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, आप खेती की बात कीजिए, किसी भी इंडस्ट्री की बात कीजिए, उसको कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। बिना पानी का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए पानी को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया है। उनका जो सोच है जल संचय जन भागीदारी, इससे लोगों को ये चीज़ समझ में आया है कि नहीं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। ताकि आज तक लोगों को लगता था कि गलतियाँ किसी और की है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है जो हमें निभाना ही पड़ेगा।
0: वाह, बहुत ही जरूरी बात आपने बोली है, जो जनता की भागीदारी की बात बोली। मुझे बताइए कि ये जो फील्ड है, ये जो मुहिम है, ये आपने कब शुरू की, इसका कारण क्या था और इसकी उपलब्धियां क्या हैं?
1: ये कब शुरू की थी बोलूंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा मेन पैशन था कि पेड़ लगाऊंगा।
0: अच्छा।
1: एंड 2010 से मैं बहुत पेड़ लगाया एंड गिनते गिनते एक बार पहुंच गए कि 80,000 पेड़ लग गए।
0: क्या,
1: 5 सालों में
0: जी?
1: लेकिन 5 सालों में 2010 से शुरू किया था, 2015 तक 80,000 पेड़। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि कोई बोले कि वाकई यहाँ तो लोग करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, बट उस 80,000 में से 40,000 पेड़ ऐसे ही मर गए। मैं जब गिनना शुरू किया पता चला पेड़ में, क्योंकि पानी नहीं मिला उसको, या तो कभी सूखा पड़ जाता है या ज़्यादा पानी आ जाता है, पेड़ मर जा रहे हैं। अब एक पेड़ में ज़्यादा पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा, कम पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा। तो मैंने ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ तो हमें पानी का पहले बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
0: जी जी।
1: चाहे एक किसान हो, जो भी हो, जो भी पेड़ रिलेटेड काम करता हो, चाहे वो एक चावल ग्रो कर रहा हो या शुगर ग्रो कर रहा हो या फल ग्रो कर रहा हो, कुछ भी, पानी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जैसे लोग, पर्यावरण प्रेमी लोग जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज जैसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, तो तब मेरे सोच में आया कि हमें पेड़ लगाने से काम नहीं होगा, हमें पानी लगाना पड़ेगा।
0: वाह।
1: तो ट्री प्लांटेशन मत कीजिए, मैं लोगों को बोलता हूँ, आप वाटर प्लांटेशन कीजिए। आप ये सोचिए कि पानी कैसे होगा, क्योंकि बारिश के समय हर जगह हरा भरा हो जाता है अपने आप, क्योंकि पानी रहता है। वाटर इज ब्लेसिंग्स एंड हमारा ही एक पृथ्वी ऐसा जगह है जहाँ पानी है, इसलिए हम हैं यहाँ पे। आज अगर चांद पे पानी होता तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज पर अभी समय हम लोग चांद पे बैठ के बात कर रहे होते, पृथ्वी में नहीं बैठे होते। तो पानी यही है और हमें यहीं पे पानी का संरक्षण, सबसे ज्यादा परम संरक्षण पानी का ही संरक्षण है इस समय।
0: तो ये तो तय हुआ कि आपने कैसे शुरू किया
1: जी,
0: कब शुरू किया और उपलब्धियां क्या हैं इसकी?
1: उपलब्धियां तो हो गई है, मेरी उपलब्धि नहीं है, लोगों की उपलब्धि है। शुरुआत 2015 से हुआ जब मैंने एक सोच निकाला कि पानी व्यर्थ बहुत जाता है।
0: जी जी।
1: चाहे शहर हो या गांव हो, हम सब नहाते हैं। एंड मौका मिला बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, मौका मिला बहुत साइंटिस्ट से बात करने का, थैंक यू IITs एंड काफ़ी रिसर्चर्स थे। तो ये पता चला कि घरों में जो पानी होता है, किसी को बोलूं पीने का पानी को आप पेड़ में डालिए तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पीने का ही पानी नहीं है तो पेड़ को कैसे देंगे, क्योंकि यही बात अक्सर होती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तब माइंड में आया कि नहाने का पानी तो व्यर्थ जा रहा है, और घर में जितने भी पानी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 40% पानी नहाने में चला जाता है एंड 30% पानी फ्लशिंग में चला जाता है टॉयलेट्स में। टॉयलेट का पानी रीयूज करने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, बट नहाने का पानी एक ऐसा पानी है जिसको हम आराम से फिल्टर करके रीयूज कर सकते हैं, चाहे आपको फ्लशिंग में यूज़ करना हो या पेड़ पौधे में देना हो या टॉयलेट धोना हो या बहुत सारे, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं नॉन ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस चीज़ को लेके मैंने एक जल तारा इन्वेंट किया, डिज़ाइन किया, एंड थैंक यू उसमें एक पेटेंट भी मिला मुझे, एंड पता चला कि पेटेंट करना बेटर है, नहीं तो कोई दूसरा उसको कॉपी करेगा और उसका पैसा लगा देगा। तो मैंने ऐसा एक डिज़ाइन बनाया है कि आप कोई कॉपी नहीं कर सकता और ये फ्री फॉर ऑल है।
0: अच्छा,
1: ये हर इंसान अपना नहाने का

0: पानी उसमें डाइवर्ट कीजिए, उसमें फिल्टर कीजिए और तुरंत इस्तेमाल कीजिए उसको। नॉन स्टॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप नहा रहे हैं, तो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पानी है। हर इंसान को एवरेज कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए, और कोई अगर शावर से नहा रहा हो तो डबल हो जाता है, 80 लीटर से 100 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए मैं लोगों को बताना लगा कि आप ये कार्य करना शुरू कीजिए। मैजिक ड्रम इसको इनिशियली कहते थे, फिर धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया जल तारा, क्योंकि हम ये घर का पानी इसमें डाइवर्ट करने लगे एंड नॉन स्टॉप ये पानी इस्तेमाल करने लगे। लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। किरण बेदी जी हैं जो बहुत ही वेल नोन फिगर हैं, तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा था, उन्होंने देखा था। एंड कई सालों बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें जल संचय करना है, जन भागीदारी ज़रूरी है, जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ, तो उन्होंने, किरण बेदी मैडम ने इस कॉन्सेप्ट को जल शक्ति मंत्रालय को ट्वीट करके बताया जी। ये देखिए, ये मुखर्जी हैं, ये बहुत बढ़िया एक आविष्कार किए हुए हैं, आप लोग ये लोगों तक पहुँचाइए। वो एक दिन है, और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बताया, मुझे जल शक्ति मंत्रालय बुलाया गया, उन्होंने ये सिस्टम देखा, उन्होंने इस बारे में बहुत सारे पोस्टर्स और उन्होंने सारे तरफ लोगों को बताना शुरू किया कि ऐसा करो, क्योंकि सोच यही है कि एक, अगर हम चाहते हैं कि आज अगर देखा जाए तो 150 करोड़ आबादी में मान के चलता हूँ हमारे देश का, हर इंसान को जोड़ना हो तो 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। एक है कोई भी कार्य ईजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए लोगों के लिए। दूसरा, कार्य सस्ता होना चाहिए। मैं बोलूँगा लाखों रुपए खर्चा होगा लोगों को पसंद नहीं आएगा। एंड तीसरा, क्विक होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ काम बोलूँगा कि 2 महीना चले काम ही चल रहा है, बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट बन रहा है, तो लोग इसमें लोग जुड़ेंगे नहीं। एंड उसी समय स्वच्छ भारत अभियान, तो उससे भी एक प्रेरणा मिला कि जब करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा काम करूंगा जिसमें हर इंसान अपने हिस्से का पानी बचाना शुरू कर दे। तो इसीलिए ये गैजेट टेक्निक बनाया गया, जल तारा, जिसमें लोग जुड़ने लगे, अपने तरीके से खुद ही इसको इंस्टॉल करने लगे। एंड देखा जाए तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है किसी का। यही है कि जैसे मैं थोड़ा आलसी इंसान हूँ, मैं खुद तो काम करूँगा नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि कोई खड्डा बना दे तो कोई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, पत्थर चुन के लाऊंगा नहीं, भाई कोई पत्थर चुन के ला दो, तो मटेरियल लेके आओ। एंड उसको इम्प्रोवाइज करते करते आज ऐसा एक डिवाइस बना दिए हैं कि आप खुद ही बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से करवा लीजिए। एक अच्छा स्टैंडर्ड करना है तो 5,000 में काम हो जाता है, लेकिन जहाँ लाखों किसान आज हमसे जुड़े हुए हैं वो खुद ही कर रहे हैं, वो बस हमसे एडवाइस लेते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। हमने कॉल सेंटर शुरू किया है, RWH इंडिया हेल्पलाइन, जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको फोटो वीडियो के साथ इतना सारा भेज देता हूँ कि आज मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ और फोटोज़ को देख चुके हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत जगह डाले हैं, उन लोग भी इससे देखते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं। डेली 300 से 400 लोग हमें ईमेल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं एंड कमेंट्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप गाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत यूजफुल हो गया है हम सब के लिए, एंड सब लोग जुड़े हैं, यही हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है।
1: जी, आपने हेल्पलाइन की बात की, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी हेल्पलाइन का नंबर या कॉन्टैक्ट का जरिया बताएं, ताकि जिन लोगों की जलतारा में दिलचस्पी है वो इस बारे में पूछताछ कर सकें और नज़दीकी लोगों से जुड़ सकें। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से आपकी इस मुहिम के साथ जुड़कर काम करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए।
0: जी, पहला तो ये है, RWH इंडिया हेल्पलाइन जो एकदम ही फ्री सेवा है, जिसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग 8 जन हैं जो जियोलॉजिस्ट हैं एंड जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट एंड सिविल इंजीनियर्स, वो भी अपने तरफ से देश का सेवा कर रहे हैं। एंड कोई भी हमें ईमेल करता है, हम लोग पहले समझते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपके भौग ज़मीन का क्या सिचुएशन है, आपका टेरेन कैसा है, आपके यहाँ पानी कितना बरसता है, आपका ज़मीन का साइज़ कितना है, छत कितना है और पानी का उपयोग कितना है, यही सब चीज़ें हम लोग उनको बोलते हैं ईमेल कीजिए हमें। waterheroofindia@gmail.com एक मेल बनाया है जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको हम लोग रिस्पॉन्ड देते हैं हमारे इंजीनियर्स बैठ के, और उनको पूरा डिज़ाइन डायग्राम के साथ सिखा देते हैं कि आप लोग ये स्टेप कीजिए और आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। एडिशनली अगर आपके पास फंड्स हैं, चाहे 1,000 रुपये हो, 2,000 हो, 3,000 हो, क्योंकि हमारा कोई भी काम 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा के खर्चे का नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में जब भी हम जल संचय की बात करते हैं या वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हज़ारों के लाखों में बिल जाता था। अब जब आप कोई बात बोल रहा है कि ये तो 2 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ 2 लाख छोड़ दो, 2,000 में हो जाएगा। कोई बोलता है 3 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ भाई 3,000 में हो जाएगा। तो लोगों को फिर ये बात समझ में आने लगी। एंड जब लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर करना शुरू किया कि जल संचय का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाटर कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को क्लैरिटी, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया एंड लोग खुद ही करना शुरू कर दिए। पहला तो ये है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट जो हमारे पूरे देश में एक कैंपेन चल रहा है। कई ऐसे न्यूज़ आए हमारे पास, न्यूज़ ये आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है कि आप लोग जल संचय कीजिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कीजिए, लेकिन वो पैसा यूज़ नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है अंडर CSR, लेकिन वो फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बहुत NGOs हैं हमारे देश में जो इस सब्जेक्ट को लेकर काम करना चाहते हैं, वो वापस चला जाता है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्किल नहीं है लोगों में। क्या करना है ये नहीं पता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब जानते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, या दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है पानी बहुत ज्यादा है, हम लोग डूब जा रहे हैं। यही दो प्रॉब्लम है, बीच का कुछ नहीं है। और सबसे अजीब बात क्या है, वही सेम गांव में पानी की कमी होती है और सेम गांव बारिश में डूब जाता है। तो सेम जगह में आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, जून महीने में यहाँ इस शहर में पानी खत्म हो चुका है, लोग टैंकर के पानी से जीवित हैं, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, पानी नहीं है, अभी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और ठीक 15 दिन बाद आप 15 जुलाई में आ जाइए और आप पूछिए कि क्या हालत है, बोले कि ये सेम गांव सेम आदमी पानी में डूब चुका है, उसको एक नौका ले आके बचा रहे हैं, अभी सारा घर भी डूब गया है। मतलब पानी की कमी नहीं है, पानी का मैनेजमेंट की गड़बड़ी है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने जो RWH इंडिया हेल्पलाइन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, इससे प्रेरणा लेके हमारी कोशिश यह है कि हर इंसान को इसके ऊपर स्किल ट्रेनिंग दिया जाए। 7,400 लोगों को हमने ऑलरेडी ट्रेन किया है, हर गांव में, हर शहर में। कोई भी सीखना चाहता हो कि जल संचय कैसे करें और जल संचय का सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, Class 8th भी पढ़ा हो, Class 5th भी पढ़ा हो, उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप जल संचय कैसे कर सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में। आप लोगों को जाइए, बात कीजिए और आप खुद करके आइए। लोगों को एक तो आप सेवा तो दे ही रहे हैं, आपको कमाने का भी अवसर मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट का जैसे सोच है कि हम लोग ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो हमारे देश में ज़रूरत है। अब जहाँ हमारे देश में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हमें लगता है, वो पानी की बचत, पानी को लेकर संचय करना, पानी का कैसे मैनेजमेंट करना, इसमें अगर स्किल डेवलपमेंट और क्लासेस हो सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी मुझे एक जगह दिया है PWD के हेल्प से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मलाड वेस्ट मुंबई में 7 एकड़ का ज़मीन उन्होंने अलॉट किया है, एक हॉस्पिटल प्रमाइसेस हैं। देश भर से कम 300-400 लोग हर महीने आते हैं मुझसे मिलने, जल संचय के अलग अलग विधि समझने के लिए, एंड उसी में लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं और अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जल संचय करने का सर्विस प्रोवाइड शुरू करते हैं, जिससे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है।
1: 7,500 लोग तकरीबन आपसे,
0: 7,400 लोग
1: जी, यानी 100 कम है उसमें। क्या इसमें वो लोग भी हैं जो ऐसे इलाकों से हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान का इलाका है या कच्छ का इलाका है?
0: आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही हैं ज्यादातर।
1: अच्छा।
0: मध्य प्रदेश, UP, थोड़ा बहुत बिहार के एरिया जहां फ्लड होता है, वो भी लोग आते हैं।
1: अच्छा, वो भी है।
0: क्योंकि सेम ये मैं सोच लीजिए पैरासीटामोल दे रहा हूँ लोगों को। हर चीज में बोलता हूँ पैरासीटामोल ले लो। पानी की कमी है तो भी आपको जल संचय करना है, पानी ज्यादा है तो भी जल संचय करना है, फ्लड आया है तो भी जल संचय करना है। तो इसलिए दो बीमारी है लेकिन इलाज सेम है।
1: इलाज सेम है। हाँ। और वो इलाज, मतलब उसकी मुहिम आप तैयार करें।
0: सेंट्रल महाराष्ट्र एंड हमारे ईस्टर्न महाराष्ट्र से, राजस्थान, गुजरात एंड बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लोग आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लोग आते हैं, जिनका पानी विषय के लेके जो डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि एक मैंने रियलाइज़ किया है कि क्योंकि मैं 22 अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहा हूँ इस समय, तो हर स्टेट का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जुगाड़ हो सकता है, क्या वर्कआउट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, काम किया है। तो लोग, कई लोग मिलने आते हैं समझने के लिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम में किस किस किस आइडियाज को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसमें क्या फायदा ज्यादा होगा, किसमें फायदा कम होगा, और कम पैसे में जो काम हो सकता है उसके ऊपर हमारा ऑलवेज फोकस रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ।
1: यही तो जन भागीदारी है।
0: बस जन भागीदारी का मतलब ही है DIY। ये आज मैंने आपसे बात करते करते ये मेरे माइंड में आया है, जन भागीदारी मतलब DIY। हमारा एक DIY किट है जल संचय के ऊपर, जो मैं सबको देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है हर चीज। क्यों, जब मैं बोलता हूँ ना, आप मुझे waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, तो उनको DIY किट मिल जाता है। उससे उन लोगों का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और उसमें फिर मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है, हमारे इंजीनियर्स का, लोग फ़ोन करके बात कर सकते हैं। एंड एक इंजीनियर के पास 1000 लोग होते हैं जिनको उन लोग सपोर्ट करते हैं, एंड वैसे वैसे हमारे इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। और एक आपको खूबसूरत बात बोलूंगा, इस समय पर 8 इंजीनियर्स हैं अलग अलग भाषा में।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है कि सबको हिंदी नहीं आती है, सबको अंग्रेजी तो नहीं आती है, बहुत लोग हैं सिर्फ गुजराती बोलते हैं, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम के लोग हम ढूंढ रहे हैं अभी। नहीं, 7 सिस्टर्स से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग और जुड़े हमसे, एंड वर्क फ्रॉम होम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ऐसे लोकल लोग हैं, बंगाली तो मैं खुद बोल लेता हूँ, उसमें मैं ठीक ठाक समझ जाता हूँ, मेरी वाइफ इसमें जुड़ गई, वो मराठी में लोगों को समझाती हैं, तो एक अच्छा चल रहा है, एंड लोगों का एक संतुष्टि है, लोग खुश हो रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कशन होता है, एंड बहुत एक खूबसूरत तरीके से पूरा देश आगे बढ़ रहा है।
1: वाह, किस तरह के बड़े बदलाव इस पूरी मुहिम के जरिए सामने आए हैं?
0: देखिए, एक कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। उसको मैं हिंदी में कैसे बता सकता हूँ, इसका हिंदी वर्ड एक कहावत है ऐसा कुछ, कि अगर आप समय पे चीज का इलाज कर लें तो बड़ा समस्या बन के नहीं आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है।
0: तो कोशिश ये रहती है कि जैसे ही हमें लगे कि पानी की कमी है, तो एक छोटा सा उपाय, जल तारा, एक बड़े समस्या को अंदर आने नहीं देता है, उसके पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं,
1: समय रहते ही उपाय कर लेना।
0: समय रहते ही
1: जी,
0: बहुत सही बताया आपने। तो कोशिश ये रहती है, जैसे एक एक देखते हैं, पूरा मोहल्ला डूब गया पानी में, अक्सर आता, पूरा गांव डूब गया, क्यों डूबता है ये हमने रिसर्च करना शुरू किया है।
1: पानी की निकासी ठीक नहीं है।
0: हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे पानी को एक जगह जमा होने देते हैं। अब सोच लीजिए, हमारे सामने बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ है, ये सोच लीजिए हमारा पूरा, कहते हैं मुंबई शहर के मान लेते हैं
1: जी।
0: हर शहर में आप देख के लाइए, एक ऊपर वाला जमीन होता है, एक निचली जमीन होती है। अब बारिश तो हर जगह सेम हो रहा है, ऊपर वाले जमीन पे बारिश हुआ है, वो सीधा बह के नीचे वाला जो सबसे जो लो लाइन एरिया है वहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ पे वर्षा जल निकासी नहीं हो पाता है। तो जल संचय एक वो तरीका है कि हर आदमी अपना पानी अपने घर में, एक स्कूल का पानी स्कूल में, एक ऑफिस का पानी ऑफिस में, एक प्लेग्राउंड का पानी प्लेग्राउंड में, एक मंदिर का पानी मंदिर में, मतलब हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, ये उससे मैंने प्रेरणा लिया है।
1: मतलब हर जगह अगर पानी का इस तरह से संचय होगा तो जल भराव नहीं होगा,
0: बस,
1: और बाढ़ की समस्या नहीं होगी,
0: बस, और वो जमीन में जाएगा जो हमें काम आएगा
1: जी,
0: क्योंकि बहता हुआ पानी नदी में चला जाता है, समुन्द्र में चला जाता है। एंड बहुत बड़ी बात सोच ये है सर, मैं आप जो जो सुन रहे हैं आप समझिए, पहले हमें लगता था कि हम बहुत बड़े तालाब में पानी इकट्ठा करेंगे, हम लोग तालाब का पानी पीते थे, वो सूखने लग गया, क्यों, क्योंकि धूप बहुत तेज होता है। फिर हमने कुआं खोदा, लोग इतने हो गए कि कुआं सूखने लग गया, 50 फीट 100 फीट तक हम लोग कुआं खोदे हैं। उसके बाद हमने बोरवेल खोदा, बोरवेल हम लोग 200, 300, 400, कहीं कहीं तो मेरे पास फोन आता है 1800, 2000 फीट नीचे तक बोरवेल से पाइप निकाल रहे हैं, बोर जो कहते हैं, अब वो भी सूखने लग गया, 70% से ज्यादा बोरवेल सूख चुका है। लेकिन हमें लगता था कि जाने दो बोरवेल को, जाने दो कुआं को, हम लोग तालाब बनाएंगे, हम लोग बांध बनाएंगे, हम लोग नदियों को रोकेंगे। वो अपने जगह ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इवेपोरेशन रेट बढ़ गया है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भापीकरण, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के जब ये कॉन्सेप्ट देखा गया था, मुंबई मॉडल अक्सर बात किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखिए मुंबई मॉडल कितना कमाल है, इन्होंने बड़े बड़े तालाब बनाए हैं, तालाब में पानी कलेक्ट करते हैं और हम लोग पूरा साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज लोग भूल गए थे कि वाष्पीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27% वाष्पीकरण हो रहा है इस समय। तो ये वाष्पीकरण 2035 का एक प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट लेके चल रही है कि उस समय जो सिचुएशन होगा हमें 10 साल पहले लगना पड़ेगा।
1: एक तिहाई पानी भाप बन के उड़ जा रहा है
0: जी, इस समय मुंबई में जो पानी की संकट है, पुणे में पानी की संकट है, चेन्नई में पानी की जो संकट है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन रेट, वाष्पीकरण,
1: गर्मी बढ़ गई है,
0: गर्मी बढ़ गई। हमें लगता था, पहले लगता था 12% पानी उड़ेगा
1: जी,
0: अभी 23
1: ऊपर हो गया।
0: बिल्कुल, यही हमारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब तालाब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, हमें पानी जमीन के अंदर पहुंचाना बहुत जरूरी है। जल संचय का तालाब भी एक तरीका है, लेकिन जल संचय, तालाब का पानी उड़ जा रहा है, पानी जो जमीन के अंदर जाएगा वो कभी एवेपोरेट नहीं होता, आप 100 साल बाद भी निकाल सकते हैं।
1: इसमें बॉटम लाइन ये है कि पानी का ये संचय हम सबको करना होगा। जो पानी की कमी का शोर मचाते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो पानी को वेस्ट करते हैं, सोसाइटीज, अस्पतालें, उसके अलावा तमाम बंगलोज, ऑफिसेज, प्रार्थना स्थल, हर एक जगह पर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पानी बचाएं, वरना आने वाले कल में दिक्कत होने वाली।
0: ये हर इंसान को अपने हिस्से का पानी, इसको मैं थोड़ा, आप जो बोल रहे हैं इसमें बस एक शब्द जोड़ दिया हूँ,
1: जरूर
0: अपने हिस्से का पानी बचाइए बस। Yes. दूसरे का मत सोचिए, अपना कर लीजिए तो अपने आप हो जाएगा सब।
1: तो सब अपने अपने हिस्से का पानी बचाएं, तो ये सारी मुहिम जुड़ के एक बड़ा बदलाव ले।
0: बिल्कुल, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जल संचय जन भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हम लोग क्या लगता है हर दूसरा आदमी करेगा, म्यूनिसिपलिटी काम करेगी, कलेक्टर साहब काम करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब का काम है, हमारा काम नहीं है, डीएम मैडम का काम है, ऐसा नहीं होता है। हम सब का, हमारा पानी हमारा घर, हमारा पानी हमारा स्कूल, हमारा पानी होता है जो भगवान ने हमें दिया है, इस जगह के लिए दिया है,
1: हमें बचाना है। तो चलते चलते अपने कॉल सेंटर का नंबर और वो ईमेल आईडी दोबारा बता दीजिए, और ये कि कैसे लोग खुद को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी इससे जुड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा काम नहीं है।
0: बिल्कुल, 2-3 घंटा मेहनत करना पड़ता है। किसी को भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो तो waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, आपको इसमें ऑटोमेटेड रिस्पांस मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, उसको पढ़ लीजिए, फिर हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको और भी इसमें डिटेल दे देंगे। एंड प्लस मैं दोबारा बोलूँगा, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट कैंपेन चल रहा है पूरे देश में, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं, आप खुद सीखिए, अपने गांव में, अपने शहर में ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कीजिए, ताकि जिस हिसाब से 7,400 लोग इससे जुड़े हैं, और भी लोग इससे जुड़ जाएं और अपना घर भी इसमें चला पाएं। थैंक यू
1: सुभजीत जी, ये जो मैटिनी शो के तहत आपसे बातें हुई हैं, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बाकी हैं, पर इस हफ्ते के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इजाजत लेने से पहले हम चाहते हैं कि अपनी पसंद का एक गाना, बल्कि कहें कि अपनी पसंद के एक गाने की आप फरमाइश करें, हम उसको पूरा करेंगे।
0: एक गाना मुझे हमेशा बहुत प्यारा लगता है जो नेचर से रिलेटेड है
1: जी,
0: एंड मेरी मम्मी भी वो गाती थी, अभी उनका फेवरेट था, अभी तो वो नहीं है, बट मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा गा दूं आपके
1: जरूर,
0: सामने
1: जरूर, जरूर। स्वागत।
0: हरी हरी व सुंदरा पे नीला नीला ये गगन,
1: बाबा
0: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो बस ये गाना सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए सुने हुए।
1: क्या बात है, बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल और सतीश भाटिया का संगीत।
0: अरे
1: सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और आगे की बातें करेंगे।
1: थैंक यू जी।
0: चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिल रहे हैं मैटिनी शो में और बातें करेंगे जल है तो कल है की। इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर फोर्सेज फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को मैं अर्पिता ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से आप विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे।
3: उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
7: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
8: सुनिए।

0: आइए सुनिए यादों की महफिल।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। दिन की इस भागदौड़ में दिन की 12:11 विविध भारती यादों की महफिल। मस्ताना प्यार मेरा।

आराधना फिल्म का गाना था और अब द ट्रेन फिल्म का गीत आनंद बख्शी राहुल देव बर्मन। मोहम्मद रफी की आवाज़।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: आती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

अजनबी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन की तर्ज थी, राजेश खन्ना की याद, यादों की महफिल।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। म्यामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। ले चलते हैं आप सभी को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे। तत्पर

वही पड़ोसन फिल्म का ये गाना एकदम जैसे ही खत्म हुआ ये लगा कि अरे ये गाना तो खत्म हो गया। और अब देखिए कि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो लगातार विविध भारती के फेसबुक पेज पर अपनी बात लिख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं सुरीला सफ़र कार्यक्रम में। वो इस कार्यक्रम के साझीदार बनना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सायरा बानो सुनील दत्त, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार आगाज़ हुआ है। एक श्रोता का कहना है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि वक्त पर बोल नहीं पाती, पर बाद में पछतावा होता है कि ऐसा बोल देती या कह देती। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लाइफ में कई बार ना कहना कितना मुश्किल होता है, तो मैंने भी नहीं कहा। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि हमारी सगाई के कुछ महीनों बाद पारिवारिक फंक्शन में मेरी होने वाली धर्मपत्नी से अलग से मिलना हुआ था अजमेर शहर में। पहले मैंने सोचा कि मैं ये कहूँगा वो कहूँगा, पर कुछ ना कहकर बस मैंने यही कहा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। और वो ये बात सुनकर मुस्कुराई थी। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही दिलचस्प है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा, कह दिया हाले दिल तो एक सुकून पा लिया, खामोशी का वो भारी बोझ दिल से हटा लिया। क्या बात है, क्या हाले दिल कह पाए, अपनी बात कह पाए, या बस दिल की दिल में ही रह गई। किस गीतकार का है ये गाना, यही है आपको बताना। और साथ में ये भी कि आपने कब किसको प्रेम पत्र लिखा था। ये जो लव लेटर लिखने की बात है, जरा आज इस राज को खोल ही दीजिए।

संगम फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे सवाल के जवाब में। एक श्रोता लिखते हैं कि सगाई के बाद अपने होने वाले पति को प्रेम पत्र लिखा था, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था जवाब भी आया करता था, और ये ख़त हमने पिछले 28 साल से संभाल कर रखे हैं। एक और श्रोता कहते हैं, ज़िंदगी में हर रोज़ न जाने कितनी बातें हम किसी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और आगे वो लिखते हैं कि जैसे भोलेनाथ ने विष को गले में रख लिया था, वैसे ही कई बातें हम विष समझकर पी लेते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने किसी को लव लेटर लिखा, लेकिन कुछ मित्रों को ज़रूर लव लेटर लिख के देते थे जो हम नहीं लिख सकते थे, उनके जज्बात हम अपनी कलम से लिखते थे। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि पुराने पन्ने पलटवा रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप सोच कर आए हैं कि हर किसी के छिपे हुए राज निकलवाएंगे। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि कहना तो चाहते थे, कहा भी, पर लोगों ने सुनी और फिर हमें ऐसा छोड़ा कि जैसे हम कुछ नहीं थे। ये एक श्रोता अपना दुख शेयर कर रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि लव लेटर लिखा नहीं था, किसी का मिला था, वो भी सांकेतिक भाषा में, क्योंकि वो ज़माना ही ऐसा था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। ट्यूशन पढ़ते समय उसकी हया भरी नज़रें, संग मुस्कान को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, ये 50 साल पुराना वाकया है। ये एक श्रोता है, उन्होंने कहा। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं, शादी के बाद जब मायके जाती तब ये सोचती मम्मी पापा से ये कहूँगी वो कहूँगी, पर जब मिलती थी तब न जाने उनकी बातें सुनने में ऐसी रम जाती थी कि बहुत सी बातें बाद में याद आती थी कि ये कहना था वो कहना था, पर कई बातें कुछ कभी बोल नहीं पाई, पापा नहीं हैं पर कह नहीं पाई बातें। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कॉलेज लाइफ में जिससे जो कहना था कह नहीं पाए और वो दूर चली गई। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि प्रेम पत्र की बात चली है तो बता देता हूं कि बिफोर मैरिज मैंने भी बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, एक ही को ये ज़रा क्लियर कीजिएगा, अभी संभाले हुए हैं, कोई रविवार की मस्तानी शाम को फिर से पढ़ लेते हैं। ये एक श्रोता की बात है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, लिखते हैं कि जो दुनिया से चले गए उनसे बहुत कुछ कहना था। और इसके अलावा और एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कहना बहुत कुछ था पर कह नहीं पाए, फिर देर हो गई, कुछ शर्म और कुछ डर रहा। ये तमाम श्रोताओं की बातें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाना सुनते हैं। ये आपको बताना है फिल्म का नाम। प्रेम पत्र की बात हुई तो कई लोगों ने जवाब दिए, अब जरा ये बताइएगा कि नॉर्मल चिट्ठी पिछली बार कब और किसको लिखी थी आपने।

लिखे जाती थीं तो लिख दिया करते थे, फिर मोबाइल आने पर यह सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया है और संदेश बॉक्स के साथ सांकेतिक इमोजी से ही लोग काम चला लेते हैं, और जो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो उनकी भला से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक श्रोता ने लिखी है। एक और श्रोता है लिखते हैं कि चिट्ठी एक बार भी नहीं लिखी लेकिन पोस्ट ऑफिस से पार्सल बहुत सारे पोस्ट किए हैं रिसेंटली। एक श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि नॉर्मल चिट्ठी लिखे, पिछली बार कब लिखी थी ये तो याद नहीं है, पर पिताजी का लिखा हुआ 1978 का अंतर्देशी मिला, आज पिताजी नहीं है पर ये पत्र मैंने संभाल कर लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती को लिखा था, बहुत बढ़िया बात। एक और श्रोता ने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती में लिखा था और उनकी इल्तिजा ये है कि मनचाही गीत कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल गया, आज के माँ बाप तो बच्चों की सुन लेते हैं, हमारे ज़माने के माँ बाप कुछ कहते सुनते नहीं थे, उससे पहले उनके हाथ बोलने लगते थे और हम कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिल ने कहा ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के दिल तक उतरा है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अपने साथी को पहला खत लिखा जो पोस्ट नहीं किया, किसी के द्वारा भिजवाया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट से एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त उड़िया था, उसे एक हिंदी भाषी लड़की से प्यार हो गया था, वो मुझसे हिंदी में प्रेम पत्र लिखवाता था, वही पहला प्रेम पत्र था। भाई देखिए, वाया वाया प्रेम पत्र यानी किसी और के लिए लिखे गए प्रेम पत्र की बात है, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ और कमेंट्स अगले गाने के बाद शामिल किए जाएंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आई थी वो इमोजी की और डिजिटल संवादों की थी, तो यहाँ बताइएगा कि क्या चिट्ठी पत्री की जगह जो व्हाट्सएप और डिजिटल संवाद ने ले ली है या जो इमोजी के जरिए संचार है, इमोजी के जरिए अपनी बात कहना है, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, क्या इमोजी सचमुच में आपके जज्बात को सामने वाले तक पहुँचा देते हैं या ये शॉर्टकट तरीका आपको पसंद है। दूसरा, व्हाट्सएप संवादों से ज्यादा आनंद चिट्ठी में आता था या नहीं।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: भाई हमने अपने श्रोताओं से ये पूछा था कि इमोजी के बारे में उनकी क्या राय है, तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पत्र लिखते और पढ़ते वक्त जो भाव मन में आता है वो किसी इमोजी या व्हाट्सअप चैटिंग से नहीं आता, केवल खाना पूर्ति होती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, लिखती हैं कि डाकिए का इंतज़ार करना और खत का लिफाफा खोलना, इसमें जो उत्सुकता थी वो किसी डिजिटल नोटिफिकेशन में नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि व्हाट्सएप में वो फीलिंग नहीं आती है जो हम लेटर में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि चिट्ठी में जो लिखा जाता है उसमें संवेदनाएं होती हैं, विश्वास होता है, उम्मीद होती है, प्यार होता है। किसी की चिट्ठी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे हम बातें कर रहे हैं, और चिट्ठी पढ़ने के बाद हमारे दिल और दिमाग में एक उथल पुथल आती है जो हमें बेचैन कर देती है, लेकिन व्हाट्सएप और इमोजी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें हमने कुछ अभी पढ़ा था। इसके अलावा एक और श्रोता है, लिख रहे हैं कि इमोजीज का आजकल बहुत अच्छा उपयोग हो गया है। कई बार कुछ भी लिखने के लिए इमोजीज से मन की बात अच्छे से जाहिर हो जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्लैंकली लिख दें तो उसका वो अर्थ ना निकले जो इमोजी के बाद होता है। तो एक श्रोता है जिन्होंने इमोजी का सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि हमें इमोजी नहीं पसंद है, फिर भी भेजते हैं जल्दी के लिए, वैसे लिखकर संदेश भेजना ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनकी सहेली हमारे कॉलेज के पते पर खत भेजती थी और हमारे खत को पढ़कर उन्हें सुनाती थी। ये बात 57-58 साल पहले की है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि आपने ये जो पूछा है इमोजी का, तो इमोजी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फीलिंग बता पाते हैं, आजकल के बच्चों को बता पाते हैं, पर मुझे तो इमोजी से कोई फीलिंग नहीं आती। ये एक श्रोता की बात है। तो भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह से अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं और इमोजी के बारे में अपनी बात कही है। देखिए ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफ़र, इसके बहाने कितने सारे श्रोताओं के ख्यालात हमें पता चले, और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं ना फेसबुक पर, लगातार ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। और इसी पल एक श्रोता ने ये लिखा है कि कम ही हमें इमोजी की भाषा समझ में आती है, ना समझी से खुशी की जगह गुस्से वाली इमोजी भेजने से बहुत सारे मित्र हमसे नाराज भी हो गए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कागज़ पर लिखी चिट्ठी तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, पर मोबाइल तकिए के नीचे रखकर कैसे सोएं। चिट्ठी में हम अपने जज्बात उड़ेल देते थे, चिट्ठी में उसका चेहरा देखते थे, जो बात पत्रों में है वो मोबाइल के मैसेजेस में कहाँ है। कितनी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, डिजिटल चिट्ठियाँ और फिजिकल चिट्ठियाँ यानी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए संदेश, इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हैं, और दूसरी बात क्या इमोजी सचमुच में अपनी बात कहने का अच्छा जरिया है, ये दोनों बातें बताइएगा। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

भाई ये गाना खत्म हो गया और इतने सारे मैसेजेस इस बीच धड़ाधड़ आए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाऊं। चिट्ठियां दिल की बात शब्दों में पिरोने के लिए वक्त और सब्र मांगती हैं, जो एक गहरी आत्मीयता पैदा करता है। हाथ से लिखी चिट्ठी हमेशा के लिए एक निशानी बन जाती है, जिसे सालों साल सहेज कर रखा जा सकता है। ये हमारे एक श्रोता की बात है। उसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पहले चिट्ठी लिखना पढ़ना, पर लिखवाने वाले के आंसू और पढ़ते समय भी उनकी रुलाई देखकर अपनी भी रुलाई आती थी। मैं नानी के साथ रहती थी, माँ दूर रहती थी, और जब भी नानी अपनी बेटी को पत्र लिखवा रही होती थी तो आधी बात रोते रोते ही लिखी जाती थी और मैं रोते रोते लिखते चली जाती थी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखने के बाद जब उसे पहुंचने का नंबर आता था तो रिश्वत भी खिलानी पड़ती थी, बच्चों को आइसक्रीम टॉफी बिस्किट। ओ हो, ये कहने का मतलब है आपका, मैं समझा। इसके अलावा एक श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि आज की छोटी सी इबारत में बहुत कुछ कह दिया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इमोजी डिजिटल भाव त्वरित प्रकट कर देते हैं। आजकल के लोगों के पास इतना समय कहाँ है सुनने बताने का, पर पत्र में तो पूरी बात लिखने और बताने का आनंद ही अलग था। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैसेज के बीच बीच में इमोजीज यूज करने से वो ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि इमोजी और ऑटो टेक्स्ट दोनों खतरनाक हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती में वो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं और उनकी शिकायत ये है कि आज तक उनकी चिट्ठी शामिल नहीं हुई है। एक श्रोता ने बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर दिया, पहले चिट्ठियां एक तार वाले स्टैंड में घोप कर रखी जाती थी, नीचे लकड़ी का एक गोल सा टुकड़ा रहता था, सारी चिट्ठियाँ सुरक्षित रहती थी। आज भी हमारे पास 70 साल पुरानी चिट्ठियाँ संग्रहित हैं। 70 साल, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इमोजी तो हमें शुरू से समझ नहीं आया और कई बार गलत सलत इमोजी भिज जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, दिल की धड़कन आत्मा की प्रतिध्वनि है। जब हम कागज़ पर कलम चलाते हैं तो हमारी उंगलियों के साथ साथ हमारी भावनाएं भी बहती हैं। पत्र में ठहराव होता है, गहराई होती है, जो पढ़ने वाले के दिल को सीधे छूती है। और दूसरी ओर इमोजी आज के दौर का शॉर्टकट है। भाई शॉर्टकट का ज़माना है, ये हमारे तमाम श्रोता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले पत्र लिखने के लिए फूल का फोटो बनाना पड़ता था, चिट्ठियों में परफ्यूम तक डाले जाते थे, ये इमोजी में कहाँ हो सकता है। चिट्ठी छूकर जो निकटता महसूस होती है वो डिजिटल संदेशों से नहीं होती। एक और श्रोता, जज्बात सिर्फ खत से महसूस होते हैं, जब खत पढ़ना शुरू करते थे तो यूं लगता था सामने वाला हमारे सामने खड़े होकर कुछ कह रहा है। कितनी प्यारी बातें। चलिए ये तमाम बातें और उसके बाद ये गाना, आप फिल्म का नाम बताइए।

अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना, और एक श्रोता ने इसकी एक पंक्ति को कोट किया है, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपने यादों का पिटारा खोल रखा है जिसमें चिट्ठियों भरा प्यार है, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पुराने जज्बात हैं जो हमें सदा जवां रखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि मैंने तो कभी पत्र नहीं लिखा, लेकिन मेरे बड़े पापा हैं वो वायलिन वादक हैं और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रंग बिरंगी इमोजी बहुत सुंदर दिखती हैं और वो आपके संदेशों को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो भाई एक पहलू ये भी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वक्त था जब लोगों के पास समय बहुत था और भावनाएं अपरंपार थीं, चिट्ठियां पोल भी खोलती हैं, अगर किसी की चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए या कोई पुरानी चिट्ठी किसी के हाथ लग जाए तो आपसी संबंध तक खराब हो सकते हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भागदौड़ आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठकर चिट्ठियां पढ़े, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आया एक ज़माना था जब डाकिया घर पर आता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के समय में ये अजीब लगेगा लेकिन मैं अभी भी दीपावली, न्यू ईयर, ईद और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स एनवेलप पोस्ट से स्टैंप लगाकर भेजता हूं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कितनी प्यारी बात है, ये पुरानी परंपरा को आपने आज तक कायम रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और तमाम श्रोता जब सुनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ज़माना था जब आई लव यू कहने से पहले लोग ख़त लिखते थे, उस ख़त में जल्दीबाजी नहीं होती थी, इंतज़ार, अपनापन और ढेर सारे एहसास होते थे। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तमाम कमेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुख्य मुख्य कमेंट्स को मैं शामिल करता चला जा रहा हूँ और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। अब ज़रा सोचिए कि दिल की बात कहने की जो झिझक है उसे साहिर लुधियानवी ने इस गाने में किस तरह से पिरोया है। फिल्म का नाम आप बताइएगा और साथ में ये कि क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ कहना है और फिर लगा छोड़ो अब क्या कहना है, यानी आप संकोच संकोच में रह गए।

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई बरस लग गए और वो किसी और की हो गई। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि इस गाने के संगीतकार हेमंत कुमार हैं। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि क्या ये फिल्म कहीं देखने मिल सकती है, अब ये तो खोज कर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पढ़ाई के दौरान जब अपने किसी खास दोस्त से कुछ बात कहने का दिल में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन एन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़, ये जो मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूँ, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है। ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर कर बुला कर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अब ये मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें तो हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इमोजी के जरिए हम तो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते पर हाँ बच्चे ज़रूर

जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो, और उसके बाद किसी ने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया और उसके बाद आप बहुत हंसे हो? ये किस फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और तब तक ये जो डिजिटल संदेश है ना, इनमें कई बार ये होता है कि किसी को भेजा जाने वाला संदेश किसी और को भेज दिया जाए। इस तरह का गड़बड़ झाला भी आपने किया है तो बताइए।

0: पूछो ना यार क्या हुआ।
1: जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना ज़रूरी है ये इस कमेंट के ज़रिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। और दिन की इस भागदौड़ में आपको जहां कहीं भी रहना है, विविध भारती के संग रहना है।

0: International Day is being observed globally today. The day commemorates the birth anniversary of Nelson Mandela and honors his lifelong contribution to humanity. The theme for this year, It's in Our Hands, highlights the role of individuals and communities in combating poverty and inequality. In December 2015, the United Nations General Assembly decided to broaden the scope of Nelson Mandela International Day to promote humane conditions of imprisonment, raise awareness that prisoners remain a part of society, and recognize the work of prison staff as an important social service. On to sports now. In badminton, Indian shuttler and two-time Olympic medalist PV Sindhu stormed into the women's singles final of Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second set of the match. Sindhu won the first set 21-19 and was leading in the second set 15-10 when a Chinese rival got retired. Sindhu will next face Japan's Akane Yamaguchi in tomorrow's final as she bids for the Japan Open title. Hockey India will begin nationwide coaching and officiating education pathway workshops from today to strengthen hockey's development ecosystem across the country. Designed to deliver internationally recognized learning opportunities, these workshops will equip participants with the latest coaching methodologies, technical knowledge and officiating standards. The initiative aims to enhance the knowledge and skill of coaches and technical officials while promoting structured hockey education across India. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third-place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. France's World Cup campaign came to an end after a semi-final defeat against Spain. England, on the other hand, suffered a 2-1 defeat to defending champions Argentina in the semi-finals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India's first privately developed orbital rocket Vikram-1 launched successfully from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi congratulates the Skyroot Aerospace team, calls it a defining moment in India's space journey. Defence Minister Rajnath Singh says India's zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Red colour warning issued for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles final of Japan Open in Tokyo. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन

0: वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: कंग्रेचुलेशन इन स्पेस फॉर फैसिलिटेटिंग
0: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
1: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आर फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
5: ऑपरेशन सिंह।

0: प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
2: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस

0: इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बापे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज। तत्पश्चात आपने सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही दोपहर समाचार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। एक बार फिर से आप सभी को मैं अर्पिता ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से आप विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे। तत्पश्चात 4 बजे एक बार फिर से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

हम रही फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आज है जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस सुमन कल्याणपुर की आवाजों में जुआरी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: पैती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: देवदास फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
2: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहा। इसके अलावा उल्हासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज़ में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत, और आप सभी की फरमाइश है। श्री गंगानगर से निकीराम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार ये हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी, और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल थीफ फिल्म का ये गाना।

विविध भारती से आप सुन रही हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देश भर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदूर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

मंच गीत कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है वो उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजा राम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनिता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहलापुर दम्बा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगढ़ फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगढ़ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा गोला से गजानन कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदुर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हस्त जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
3: मन चाहे गीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ, मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ। मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा, जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए, मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। हाँ बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ?
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया, तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओफो नानी, आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात कि ब्रेड?
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही है, अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया, खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता, तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
0: अरे नानी, वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी, हैं?
0: हाँ, और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है, उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा, गुड़िया आज बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी, नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
1: बाय बेटा।
2: सब लोग।
0: वाओ रायता, माय फेवरेट। मम्मी, और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है? मैं देख लूं खोल के?
2: हाँ हाँ देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो, बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा।
2: गुड़िया, लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
3: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई, हम भी तो चखले थोड़ा सा।
0: मम्मी आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
2: जिसने बनाया है ना उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
2: यस।
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा, तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है न बर्तन, अब तेरी माँ भला कितना खटेगी। बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुकुम देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियाँ निकालना आता है।
0: क्या पापा?
2: अरे आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ, आ जा बेटा।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा प्रयत्न है।
2: जी हाँ वो तो है।
4: खाओ खाओ पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है, बाद में मत कहने की पापा सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
2: तो पापा शुरू, बस करिए, है नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
4: अच्छा सच में?
2: हाँ
4: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
3: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले रही
3: थी। अरे बहू, हम सब एक ही साइड में है, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ए गुड़िया तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
0: अरे दादी पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो तू उन्हें पूरी खबर देते है?
0: और नहीं तो क्या, भूरी की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा कैसे? लेकिन
0: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
0: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
3: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे भला आया?
0: ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना?
3: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
0: हाँ तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
3: हाँ
0: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
3: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
0: ओहो दादी, लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
3: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
2: अम्मा, अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
3: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
0: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुँच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
3: हाँ।
0: और भूरे को कुछ खाने को देता है
3: रोज।
0: और नहीं तो क्या।
3: अच्छा
0: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
4: अम्मा इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
0: हाँ रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
3: हाँ हाँ कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
4: गुड़िया याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
2: हाँ।
4: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
2: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
4: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
2: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे। दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
0: ओ मम्मा भूरे की बात बताइए ना।
2: हाँ हाँ अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता ही जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर, इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर जहां न आदम चात। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहां जाए, कैसे करें और कैसे बस्ती में पहुंचे।
3: ए बहू तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
2: हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जरा सोचिए सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है, इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले।
3: बहू हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
2: हाँ तो अम्मा हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो में सिमटे रहते हैं।
3: हाँ।
2: पर उस दिन, हाँ अम्मा उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
4: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
2: हाँ वो तो है लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारें, बचाएं और कैसे लेके आएं। और याद है ना यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
4: हाँ।
2: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
4: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया।
3: हाँ? क्या घर लाने का?
4: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया। क्यों, याद है ना तुम्हें?
2: हाँ, हाँ, हाँ,
4: गुड़िया, उस रात क्या हुआ था याद है?
0: पापा, पापा, पापा!
4: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
0: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
4: अरे क्या है बताओ
0: पापा,
4: तो
0: पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। I think he is lost.
4: हाँ, भूखा और परेशान है, लगता कहीं से भटक के आ गया।
0: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, we must do something.
4: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
0: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए? प्लीज पापा,
4: इस समय लॉकडाउन में?
0: प्लीज पापा,
4: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
0: अरे पापा ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो, पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
4: देखते हैं, भूखा तो है, सोचने दो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं चला जाता हूँ, कुछ दे आऊंगा, ठीक है? तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
2: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे दी ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना?
4: हाँ।
2: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया, ठीक है? ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क, मास्क कहाँ है आपका?
4: अरे हाँ लगा लिया है।
2: सैनिटाइजर रखिए भाई।
4: अरे रखा है भाई।
0: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से लेना है।
2: भाई तुम वहाँ क्या करोगे?
4: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
2: कमाल है आप तो।
4: तुम डरोगी तो नहीं ना?
0: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
4: चलो
2: डरोगी नहीं, ये क्या है
0: मम्मा, प्लीज।
4: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
0: हाँ हाँ पापा आइए।
5: कृपया दरवाजा बंद।
4: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
5: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
2: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए, सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
3: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
2: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए
3: इतनी रात को। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
2: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे।
3: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
2: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
0: हेलो हाँ मम्मा,
2: तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
0: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। चा? और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
2: क्यों भला?
0: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
2: हवा?
0: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
2: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
0: हाँ तो हम पहुंचेंगे तो आपको दिखी जाएंगे, आप बस वेट करिए।
2: अच्छा
3: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
2: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई, अम्मा आप फिकर क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
3: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
2: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
3: आजादी मिलने का नहीं, हाँ? जो मारकाट मची थी उस वक्त, उसका डर। हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे, पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
2: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
3: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं, पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है। किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
2: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
3: पर घर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
2: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा, आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए। हाँ। मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना।
3: हाँ हाँ, देख देख, ठीक है, आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
2: गुड़िया गुड़िया, पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ, मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो, मैं आगे खिड़की पर। अब रुको, हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
3: हाँ बहू, एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
2: हाँ अम्मा, ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए। आइए आइए बैठिए। हाँ मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
0: हाँ मम्मा। हाँ मम्मा, आप देख रहे हो? हाँ, हम जो कटोरा लाए थे ना, मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
3: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
2: हाँ, अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
3: अरे डर रहा होगा ना शायद।
0: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रही है।
2: पता नहीं कब से प्यासा था। और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
4: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम, तुम लोग आसमान में टंगे हो।
0: आसमान नहीं, स्वर्ग में बैठे
3: हैं। बड़ा स्वर्ग, स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी हैं, कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ।
4: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
2: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
4: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
2: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों। 15 मिनट का

0: आस्था, पूरे 2 घंटे लगाए हैं आप लोगों ने।
1: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझिए आप। मतलब हम समझा दें आपको, जमीन आसमान का मतलब यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं
0: जी।
1: जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
0: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
1: कह तो रहा हूं जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
0: अरे क्या ऐसा है, बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
2: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
0: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं? हाँ
3: हाँ मम्मा, सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हाँ? सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रादर दे वर रनिंग, यू नो, रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा, टू देयर नेटिव प्लेसेस मामा, दे वर एस्केपिंग, माइग्रेटिंग।
0: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
3: हाँ, टीवी जैसा ही पर एकदम रियल, लाइव, जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
0: अच्छा,
3: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
0: अच्छा,
3: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वर्ड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
0: अच्छा,
3: जितने वो सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
0: क्या,
3: यू नो पापा ने क्या किया?
0: क्या?
3: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
0: अच्छा,
3: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
0: हैं? हाँ हाँ हैराम, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
2: हुआ?
0: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
2: अरे
0: हाँ, इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
2: कोई बात नहीं, कोई बात
0: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो,
1: हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ?
0: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
1: नहीं नहीं, आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो, जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बचा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार, न सेठ, न सरकार, न अमीर, न गरीब, खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं, और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
0: ये कौन लोग हैं?
1: यही तो विडंबना है, ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था, ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
0: आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है, और वो भी जागते हुए।
1: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत, जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो, हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है।
0: हाँ।
1: काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
0: क्या?
1: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है और तैल गया हूं, अंदर तक तैल गया हूं।
3: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
2: क्या गूज़ हो जाते हैं? क्या बक रही है?
1: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज़बम कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
2: हाँ हाँ
3: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
2: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
3: अरे
2: मर
3: नहीं
2: जाएगा।
3: दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
2: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
3: सच्ची, और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
2: हाँ,
3: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
2: हाँ।
3: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
0: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई,
1: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
0: बिल्कुल।
1: उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
0: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। भाई ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी।
0: बस बस बस, शुरू हो गया ये, इनको मौका मिला गुड़िया और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
3: क्या मम्मी पापा आप भी ना, अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। हाँ। ओ नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
4: गुड़िया,
3: अरे आप जाग रही हैं?
4: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
3: इज इट? क्या अच्छा, बात है।
4: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
3: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला। अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ, ओहो भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह मैं कह सकती हूँ नानी की भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरे खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
4: बिल्कुल खुश।
3: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
4: हाँ बेटा जरूर आएगी।
3: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
1: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
3: हाँ।
1: तो जानती हो मैंने क्या किया?
3: क्या बताया पापा?
1: दूध लाया।
3: हाँ?
1: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
3: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
1: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
3: क्या बात है।
1: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
3: इज इट
1: बंगाली संदेश?
3: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
1: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
3: वाओ यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और धे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था: माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ देर में एक बार फिर से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, और तत्पश्चात एक बार फिर से हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे लगातार शाम 5 बजे तक।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट को हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया है। भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बन गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
4: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को मिलने के लिए भी आमंत्रित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों को हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार

0: से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी हैं। दोनों देशों ने सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमले किए। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर संघर्ष तेज होने के बाद दोनों देशों के बीच अंतरिम युद्ध विराम समाप्ति के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार लगातार 7वीं रात किए हमलों में ईरान के निगरानी केंद्रों, सैन्य रसद सुविधाओं, भूमिगत हथियार भंडारों और समुद्री परिसंपत्तियों को निशाना बनाया गया है। उधर ईरान ने कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। कुवैत ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का दावा किया है। इस बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $86 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि शिकायत निवारण का दायरा शिकायतों के निपटारे तक सीमित नहीं होना चाहिए तथा पेंशन भोगियों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत प्रसारित की जाएगी। श्री आर माधवन को प्रतिष्ठित पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। यह बातचीत आकाशवाणी गोल्ड से आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। और खेलों में फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मैच भारतीय समयानुसार 2:30 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आप सभी को ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से विविध भारतीय कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे लगातार शाम 5 तक।
2: एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं।
3: एक मार्केटिंग बहुत मार्केटिंग जरूरी है के लिए, जी। के लिए। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है, तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
2: मुझे अलग अलग तरह का, मूड के हिसाब से। मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं, जैसे डॉक्टर जिवागो, और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना
3: जी।
2: बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
3: लेकिन लाउड सिनेमा नहीं,
2: बिल्कुल
3: रहा
2: नहीं, नहीं। और आप और हमारे इर्द गिर्द की कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो हैं हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है।
3: चलिए, तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर
2: जरूर
3: आगे बढ़ाते हैं।
2: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे,
3: आइए सुनते हैं, बहुत ही सुंदर।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज़्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज़्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है, वो चूंकि इतिहास है तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा
0: जी।
1: तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थीं उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह के जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं
0: जी। तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉलस्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
0: जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं है कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है, स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा। तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही हैं, तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
1: जी, कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशियस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगी कि स्त्री के पक्ष में हूँ मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि संसार दोनों से चलता है
0: जी।
1: है ना, आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये, पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मो जी बोलते थे, वो
0: जी।
1: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मो जी, आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
0: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का
1: जी।

0: आज की लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की ज़रूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत ज़रूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।

0: आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
1: जी,
0: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो,
1: ये होना वहां चाहिए। उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए
0: जी,
1: अपने निर्णयों को लेना सीखे कि जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहाँ तक सहमत हैं? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहाँ कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आड़े
0: देखिए आता है? समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है
1: जी।
0: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है, या ये कर रही है, वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके? मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूँ। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीज़ें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट करके, और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो अब पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहाँ पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है ये, तो पुरी साहब करेंगे? पुरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का ऐड है? बोले सिगरेट का। तो पुरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं, पुरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पुरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूँगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पुरी साहब, अगर आपके कहने से नहीं पियेंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं, और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हों या ना हों, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो, या हीरोइन मानता है। आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो हैं आपने स्टेक पे लगा दी हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का गीत है
2: जानवा।

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआती
1: ऑफबीट।
0: बहुत सारी
1: जी जी
0: फिल्में
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब की
1: जंपिंग
0: फिल्मों में,
1: जैक के नाम से जाने जाते थे।
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक
1: जी,
0: अलग रूप
1: अलग
0: देखने को
1: रूप थे।
0: मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद हैं?
1: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
0: मधुबाला
1: मधुबाला। उनकी सुंदरता
0: आएगा
1: पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर्स थी, वो उनका एक स्टाइल था। और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज़्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन उनकी खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे। तो
1: जी,
0: कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए घातक हो
1: जैसे
0: जाती
1: अभी
0: है।
1: ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है। मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छी हैं वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या? उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी।
0: बहुत सुंदर
1: जी
0: आंखें बोलती थी उनके,
1: जी
0: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका।
1: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं। वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
0: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा है,
1: निर्देशक
0: आप
1: कितना स्ट्रांग
0: स्ट्रांग
1: है
0: था।
1: अपने काम में।
0: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
1: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे हैं, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अन्नू भैया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते
0: हाँ
1: बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला,
0: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार
1: बहुत
0: हैं
1: अच्छे।
0: और जी
1: हाँ
0: बहुत ही संचिता कलाकार हैं।
1: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीज़ों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से ही पूछते हैं,
0: जी
1: वो
0: जी
1: गांव में तो नहीं रहे हुए होते हैं। तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
0: स्टैब्लिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
1: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
0: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
1: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, मैं लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
0: बहुत सुंदर गाना है। चलिए तो सुनते हैं यही गीत।
2: सपनों

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में। बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है अब
0: तलक।
1: जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड।
0: जी,
1: तो उसमें मेरे भाई, मेरी माताजी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी,
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था। आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथारसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी,
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी ख़राब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूँगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूँगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूँगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको। फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
0: जी,
1: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी, मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे, थिएटर कंपनी के बाबूजी की जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थीं, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो
0: जी।
1: तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीज़ें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता की संतान होके आज देखिए जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई,
0: जी
1: है ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
0: काफी चर्चित रही ये किताब, और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये, यूं गुजरी अब तलक। और उसमें मुझे लगता है कि हम
1: साहित्य तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10 में बुक में लिया,
0: शामिल किया, और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी, आगे भी आप यूं लिखती रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही है। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
1: जी।

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जी। एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी
0: करनी
1: पड़ती है,
0: पड़ती है।
1: और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूँ, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूँ तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं, बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है,
0: जी
1: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे, पहली बात। जिसने इसी को पढ़ा है, जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे,
0: हाँ, वो तो
1: नहीं।
0: सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
1: हाँ ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होके आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती हैं, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद
1: जी
0: को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
0: जी, तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस
1: जी
0: कार्यक्रम का।
1: जी एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, LP का म्यूजिक है, न जा अब कहीं न जा,
0: दिल के सिवा
1: दिल के सिवा।
0: क्या बात है।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती का कार्यक्रम, और इसी के साथ ही हमारी आज की पहली सभा यहीं पर समाप्त होती है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बजने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी है। शाम की दूसरी सभा में यानी कि 6 बजे आप सभी से एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 हो चुके हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी का स्वागत है।

तो चलिए श्रोताओं, आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें आपको। कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे मार्ग कार्यक्रम में भक्ति गीत एलिस ललवुलपुई और उनके साथियों की आवाज में। उसके बाद आप सुनेंगे 6:25 पर जेमे कार्यक्रम में आधुनिक गीत देसाओलुंग जेमे और उनके साथियों की आवाज में। 6:45 रहेगा संध्यार आंचलिक पातोरी का।

7 बजे का समय रहेगा दिमासा कार्यक्रम का। इसमें आप सुनेंगे लोकगीत निर्मला बथारे और उनके साथियों की आवाज़ में। 7:20 रहेगा करबी कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आधुनिक गीत क्लैरिस क्रॉपी और उनके साथियों की आवाज़ में। 7:40 में आप सुन पाएंगे कुकी कार्यक्रम में भक्ति गीत किम नेम हावलाई और उनके साथियों की आवाज़ में।

7 बजे का समय रहेगा किसान वाणी कार्यक्रम का। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुन पाएंगे टीचर्स प्रोग्राम। 8 बजकर 45 मिनट रहेगा समाचार संध्या का।

9 बजे का समय रहेगा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग का। 9:30 पर आप सुन पाएंगे चित्रगीत कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

तो चलिए, समय हो गया है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को शुरू करने का। सबसे पहले सुनते हैं मार्ग कार्यक्रम में भक्ति गीत एलिस ललवुलपुई और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जेमे कार्यक्रम में आधुनिक गीत दे साउलांग जेमे और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ जेमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता, अब समय हो चला है संध्यार आंचलिक बातोरी का, जो कि आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से कुछ ही देर में रिले किए जाएंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिमासा कार्यक्रम में लोकगीत निर्मला बथरी और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ दिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है कर्बी कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं आधुनिक गीत क्लैरिस क्रॉपी और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कर्बी कार्यक्रम में क्लारिस क्रॉपी और उनके साथियों की आवाज़ में आधुनिक गीत। अब समय हो गया है कुकी कार्यक्रम का, चलिए सुनते हैं भक्ति गीत किम्बेम हाउलाई और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुकी कार्यक्रम में भक्ति गीत किम्बेम हावलाई और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है कृषि कार्यक्रम किसान वाणी का, तो आइए सुनते हैं आज का किसान वाणी का कार्यक्रम।

0: प्रस्तुत है
1: भारत सरकार की कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
0: किसान वाणी।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, हम हाजिर है किसान वाणी के एक नए कड़ी के साथ, और इस कड़ी के साथ मैं आपका दोस्त शांतनु मजुमदार
3: और मैं हूं चुमकी। स्वागत है आप सभी का किसान वाणी के कार्यक्रम में।
2: दोस्तों, किसान वाणी के इस कार्यक्रम में आज हमारा विषय है सुअर पालन। तो किस तरह सुअर पालन किया जाता है, इसी संदर्भ में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित है मैं सेंग रिया में। इनसे आज हम बातें करेंगे सुअर पालन के बारे में, साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एक प्यारी सी स्थानीय लोक संगीत। तो श्रोताओ, लीजिए आरंभ करते हैं आज का किसान वाणी कार्यक्रम। तो सबसे पहले मैं सेंग जी, किसान वाणी कार्यक्रम में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका नमस्कार।
4: हाँ, नमस्कार।
2: मैं सेंग जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सुअर पालन कितने साल से करते हैं?
4: मैं अभी फिलहाल 6 साल हो गया हम सुअर पलते पलते में।
2: सुअर पालने में जब हम लोग सोचते हैं सुअर पालने के बारे में, तो सबसे पहले बात आता है घर के बारे में। तो सुअर का घोटू पालने के लिए घोटू कैसा होना चाहिए?
4: अगर घर अच्छा होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा, तब सुअर बच्चा भी अच्छा से बड़ा होते जाएगा। सुअर अच्छा जात होगा, बड़ा जात, तभी भी घर छोटा होगा, इतना नहीं बढ़ेगा साल आने से भी। इसलिए बच्चा होने से भी घर तो इतना बड़ा बनाना है, जैसे इतना निकल नहीं सकेगा इतना तक घर भी इतना बड़ा बनाएगा, तो बच्चा भी आराम से बैठेगा, आराम से आना जाना करेगा, आराम से गुरा गुरी करेगा, तो अच्छा बड़ा जल्दी हो जाएगा।
2: हम अब सिर्फ आपसे पहला घर के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि आदमी का जो हमारे जो लोकल फार्मर है, सबको दिमाग में ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अब जो सुअर का घर बनाते हैं, ये क्या मिट्टी में बनाते हैं ना मचांग में बनाते हैं?
4: हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकल एरिया में तो मचांग में बनाता है, लेकिन इससे अच्छा तो ज़मीन में बना के ऐसे कच्चा में थोड़ा थोड़ा दलाई दे के हम लोग बनाता है, उसमें इसके लिए भी रिक्स नहीं है। मचांग में बनाएगा तो मतलब फर्क में गिरेगा, फंस जाएगा
2: जी,
4: इसलिए थोड़ा इसमें हड्डी भी टूट जाता है
2: जी,
4: इसलिए ज़्यादा रिक्स होता है
2: जी।
4: इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अभी जो सोचता है ज़मीन में बनाएगा, और चलने आने में इसका नाखून भी एकदम साफ नहीं होगा
2: जी,
4: क्योंकि प्लास्टर दिया बोल के
2: जी,
4: इसलिए बहुत कंफर्ट अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आजकल लोकल में ये बनाता है।
2: नीचे में ढलाई देके बनाते हैं?
4: हाँ, ढलाई देके
2: जी, बिल्कुल। तो ये घर जो बनाते हैं, ये घर क्या दूसरे जानवर का जैसे गाय भैंस या बकरी का जैसे होता है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का होता है सुअर है बोल के?
4: अलग है, मतलब चौड़ा इतना नहीं लगेगा, लंबा लगेगा
2: जी,
4: जैसे कि 5 फुट चौड़ा, लंबा 8 फुट ऐसे होगा। तो सुअर का मतलब कितना लंबा होता है, कितना बड़ा होता है, हम लोग को सब मालूम है
2: जी,
4: इसका मुताबिक से हम लोग बनाता है। कम से कम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है 5 फुट चौड़ा और लंबा 8 फुट ऐसे बनाता है
2: जी। जैसे कि आपने बोले नीचे में ढलाई देते हैं, पक्का करते हैं, ऊपर में साइड का बेरा क्या बम्बू का होता है या आपका टीना का होता है, या आधा टीना होता है आधा बम्बू होता है, कैसे होता है?
4: ये तो मतलब अपना हिसाब से है, लेकिन पूरा लास्टिंग रहेगा, मतलब 5 साल जाएगा, 6 साल जाएगा, तो ईटा से पूरा मतलब चेंडा बना के भी बना सकता है। और 1 साल का जैसे 1 साल होने के बाद फिर रिपेयरिंग करेगा, ये है वो है बोलने से मतलब पूरा बम्बू काट के ऐसे ऐसे 20-20 में लगा के
2: जी
4: ऐसे बनाता है, तभी भी तो 1 साल के बाद ज्यादा नहीं जाएगा,
2: ज्यादा नहीं जाएगा ठीक है। हम लोग फ्लोर की बात किए हैं, साइड का बेरा का भी बात किए हैं, अभी आ गया रूफ के बाद। तो ऊपर में रूफ जो होता है, टीना जो होता है, इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉलिथीन या टीना या दूसरा किस्म का कुछ?
4: हम लोग जैसे अभी जो चलता है
2: जी,
4: आधा टीना आधा खुला रहता है, मतलब ठंडा सीजन में धूप सीखने के लिए
2: जी,
4: हाँ धूप सीखने के लिए, और बारिश का टाइम में वही आधा टीना में जाके आराम करेगा, मतलब सोएगा और इसका नीचे में बैठेगा, छाया का नीचे हो जाता है
2: जी, बिल्कुल।
4: हाँ, इसलिए हम लोग पूरा देने से इसको धूप नहीं मिलता है
2: जी, बिल्कुल।
4: इसलिए आधा में बना के, धूप सीखना है तो बाहर में आना है।

0: बड़े सुने से अंदर में जाना है, ऐसे बनाते हैं हम लोग।
1: जी बिल्कुल। तो मिसिंग जी, यह रह गया आवास के यानी कि घर के संबंधित कुछ जानकारी।
2: तो रिया में जी, आपके पास कितने स्वर है?
0: अभी फिलहाल 7 तो है।
2: 7 स्वर है। जी, तो बहुत अच्छा बात है। माइकी है कि बच्चे हैं?
0: बच्चा 4 है, माइकी 3 तो है।
2: अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। तो आप माइकी का देखभाल कैसे करते हैं?
0: इसको भी छोटा से हम लोग पाल के गाभिन देने के लिए मोटा से लगाता है।
2: अच्छा।
0: इसका बाद गाभिन होगा नहीं होगा, इसको भी मतलब गाभिन होने का पहले इसका सीजन कैसे होता है, ये सब के लिए भी हम लोग पूरा सुबह शाम देखने पड़ता है। 15 दिन के बाद सुबह तो बच्चा से लेके 6 महीने के बाद इसका गर्म शुरू हो जाता है। तो इसका गर्म जब होगा, हम लोग इसमें 3 बार होता है, एक बार गर्म होने से नहीं देना है
2: अच्छा
0: और 2 बार भी नहीं देना है, पूरा
2: अच्छा अच्छा
0: पक्का 100% होना है। तो कम से कम 3 बार में, 3 बार गर्म होगा, लास्ट 3 बार में मोटा को लगाना है। इसके बाद गाभिन होता कि नहीं इसको भी देखना है, इसका गाभिन होने का तैयारी तैयारी कैसे होता है इसको भी देखना है। लेकिन कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, देखे भी गाभिन भी नहीं होता है तो दोबारा भी देने लगता है। इसके बाद अगर एक बार में हो गया होने से, इसको भी अच्छा से अच्छा खाना खिला के अच्छा देखभाल करने लगता, और इसका गौर में कहाँ में गिरेगा कहाँ में पाओ क्या करेगा इसको भी अच्छा से देखने लगता। होते होते में गाभिन होने के बाद में बच्चा निकलता है, ऐसे देखभाल करते हैं हम लोग।
2: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। तो आप स्वेरों को दिन में कितने बार खाना देते हैं?
0: हम लोग ऐसे तो 2 बार ही देता है, सुबह शाम देता है।
2: सुबह शाम देता
0: जो
2: है। और पानी?
0: पानी भी मतलब हम लोग का लोकल में तो आधा खाना आधा पानी इसमें मिला के पूरा
2: अच्छा
0: दिला दिला ऐसे ले लेता है। इसमें भी पानी भी हो गया और खाना भी पेट भी भर गया, ऐसे होता है।
2: अच्छा तो खाने में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? बाजार से लाते हैं कि खुद घर में प्रिपरेशन करते हैं?
0: हम लोग खुद घर में प्रिपरेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जंगल में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, और प्लस थोड़ा थोड़ा इसका दाना भी छोटा टाइम होने से थोड़ा थोड़ा दाना देता है। थोड़ा बड़ा 5 मुट्ठी 4 मुट्ठी हो जाएगा तो लोकल जंगल का पत्ता और कला घास ये सब काट के अच्छा से पूरा पकाई के हम लोग इसमें चावल दे के घुराई के पूरा अच्छा से पकाई के हम लोग खिलाता है।
2: तो जैसे कि लोकल फार्मर का देखा जाता है कि वो लोग कभी कभी किचन वेस्ट या होटल वेस्ट भी इस्तेमाल करते
0: हाँ
2: हैं,
0: हाँ हाँ
2: तो आप लोग भी वैसे इस्तेमाल
0: हाँ
2: करते
0: हाँ
2: हैं?
0: हम लोग भी करते हैं, मतलब आसपास बाजार का सामने में हम लोग जो जो लोग पालते हैं ये लोग, तो हम लोग भी बोलो हम लोग बाजार का सामने में तो होटल का कुछ कुछ मतलब वेस्टेड ये सब खाना ये सब भी यूज़ करते हैं, लेकिन दूर दूर में तो कहाँ मिलेगा।
2: हाँ
0: इसमें
2: हाँ
0: ज़्यादा
2: हाँ
0: से ज़्यादा जंगल का और कुछ पत्ता ये सब और कोला घास नरम नरम ये सब काट के पूरा बॉयल करके हम लोग खिलाता है,
2: अच्छा
0: और
2: अच्छा
0: भूसी भी साथ में डालता है
2: भूसी
0: भूसी।
2: भी डालता
0: जी
2: है। सवेरे को आपके हिसाब से, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके हिसाब से सवेरे को कौन सा खाना ज़्यादा पसंद आता है?
0: हमारा हिसाब से सबसे ज़्यादा पसंद सबसे लास्टिंग सबसे मतलब तो चावल का साथ एक तो खोला घास पूरा बारी बारी छोटा छोटा करके इसको अच्छा से पकाए के उसको खिलाने से मतलब सुबह भी खाएगा शाम भी खाने दिल करेगा परसों भी दिल करेगा। लेकिन कोई कोई पता जंगल का पता एक बार खाएगा तो दूसरा दिन नहीं खाता है और
2: ओ
0: ऐसे भी होता है, लेकिन सबसे लास्टिंग चलते रहना है तो खोला घास और भूसी और चावल गुरा सब्जी वगैरह मतलब बासा बासी वाला ये सब भी होटल का डाल के हम लोग खिलाते हैं।
2: स्वर को वो ज्यादा
0: जी
2: पसंद आता है। और यामी जी, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके एक्सपीरियंस में स्वर को कौन किस टाइप का खाना देने से, या फिर क्या है जो देने से उनका ग्रोथ अच्छा होता है? क्योंकि जो लोकल फार्मर है उनको तो इनकम पर्पस के लिए स्वर को रखा है, तो वो
0: जी
2: जितना जल्दी ग्रो करेगा उतना इनकम जल्दी
0: जी
2: जनरेट होगा।
0: जी
2: तो
0: जी
2: इसके लिए किस टाइप का खाना देने से वो जल्दी ग्रो करेंगे?
0: ग्रो करना है तो हम लोग देखा भी है और खिलाया भी है। टाउन एरिया का सामने में जो शोर पड़ता है इसको तो थोड़ा होटल का तेल सब्जी मोटर क्या क्या ये सब बचने वाला दाल वाल ये सब में ज़्यादा ग्रो ज़्यादा होता है बढ़ता है ज़्यादा, लेकिन जंगल का तो तेल कुछ भी नहीं है। भूसी से सबसे अच्छा खाना मिलता है, कोला घास मिलता है, वो तो खाली क्या बोलता है चावल गुरा वो भी बेस्ट है, लेकिन तेल वेल कुछ भी नहीं इसलिए थोड़ा बढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है।
2: अच्छा, तो मतलब तेल वगैरह, खाने में तेल वगैरह होने
0: जी
2: से उनको प्रोटीन विटामिन ये सब
0: हाँ हाँ
2: अच्छा
0: हाँ
2: से मिलता है और वो
0: हाँ
2: जल्दी
0: हाँ
2: ग्रो करते
0: हाँ
2: हैं।
0: हाँ
2: जी, ये तो अच्छा बात है। रियामे जी, स्वरों का खाना जो है वो सब सीजन में, एवरी सीजन में सेम होता है कि सीजन वाइज उनका खाना चेंज होते रहता है?
0: खाना सीजन चेंज होता रहता है। हम लोग थोड़ा ड्राई सीजन आ जाएगा तो हम लोग बस्ती में तो जो सीजन वाला पूरा सुखाई के बस्ता में पैकिंग होके इसको पूरा ड्राई सीजन में भिगा के बॉयल करके उसका साथ गुड़ा बना के भी खिलाता है। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्राई सीजन में तो वही खोला घास ही खिलाता है, पतला दुबला होने से भी तभी भी होता है, ड्राई सीजन में भी तो नहीं मरता है खोला घास तो। लेकिन अभी जो सीजन में तो हम लोग पत्ता हो तो भी मिस होता है, लेकिन उस टाइम में तो पत्ता खत्म हो जाएगा।
2: हाँ।
0: तो ज्यादा से ज्यादा कोला घास में यूज ज्यादा होता है।
2: अच्छा,
0: ऐसे होता है।
2: तो रियामे जी, आपने जैसे कि कहा है कि आप स्वेरे को दिन में दो बार खाना और पानी देते हैं, तो एक मिडिल एज का जो स्वेर होते हैं उनको दिन में कितना किलो खाना और कितना लीटर पानी का जरूरत होता है?
0: जैसे सुबह के खाना में 2 लीटर का पानी इसमें मिक्स होता और चावल गुड़ा उठो अपना दाना 2 किलो।
2: अच्छा,
0: के पूरा मिला के 2 लीटर 2 लीटर 4 लीटर एक खाना में, और 2 टाइम में 8 लीटर मतलब
2: खाता है
0: मिडिल
2: एज का। अच्छा, और अगर ये बच्चों के लिए है तो, मतलब जो बच्चे स्वेर है?
0: हाँ, बच्चा स्वेर के लिए तो 1 किलो आधा किलो इसका बच्चा का ऊपर में भी है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, उनका वेट का ऊपर,
0: वेट का ऊपर में भी है, मांस का ऊपर में भी है।
2: अच्छा,
0: तो कम से कम 2 महीना का मांस में तो 2-3 किलो तो नहीं खाएगा। हाँ हाँ, और 4-5 किलो का, 5 महीना का स्वर तो कम से कम 1 किलो तो खाएगा, ऐसे इसका हिसाब से खिलाता है हम।
2: वेट का हिसाब से खाना ऊपर नीचे करना पड़ता है। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं मैसेंग रियामे जी से, स्वर पालन के विषय पर कुछ जानकारी। इस बातचीत को हम यही पर विराम देते हैं और सुनते हैं एक मधुर स्थानीय लोक संगीत।

0: श्रोताओं, इस लोकसंगीत के बाद चलिए फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रिया में जी से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं।
1: तो मिसिंग जी, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जब आप सुअर पालते हैं तो एक सुअर बच्चा से लेके बेचने तक कितना दिन का समय लगता है? मिसिंग जी, आप ये बताइए कि जब आप सुअर पालते हैं, बच्चा लेके आते हैं, तो बच्चा बेचने तक ये कितना किलो तक होता है, कितना क्विंटल तक होता है?
2: बेचने तक मतलब सुअर बेचेगा जो अलग अलग किस्म का है, कोई 2 साल में बेचता है, कोई 1 साल होगा तो बेचता है।
1: जी,
2: और सुअर के ऊपर में भी है, क्योंकि अच्छा खाना खाता है बोलने से 1 साल में कम से कम 40-45 ऐसे तो आ जाता है।
1: 45 किलो?
2: हाँ, 45-40 किलो में तो 5 मुट्ठी आ जाता है। लेकिन कोई कोई सुअर अच्छा नहीं है, बिजन अच्छा नहीं है,
1: जी
2: कम से कम 20-25 भी आ जाता है। इसमें तो बेचने के लिए तो थोड़ा तकलीफ होगा, मतलब मॉल भी नहीं पकड़ेगा मतलब।
1: जी
2: हाँ, इसलिए सुअर का ऊपर में भी है।
1: जी अगर अच्छा पोषण मिले, अगर अच्छा आहार मिले, अगर अच्छा जात का हो, तो आपको 1 साल में 45 किलो भी हो सकता है। और अच्छा जात का नहीं हो, अच्छा पोषण नहीं मिले, तो आपको 20 किलो तक भी हो सकता है।
2: हाँ हाँ हाँ
1: जी बिल्कुल। 50 किलो तक होने में कम से कम कितना दिन का समय लगता है?
2: 50 किलो होने में कम से कम कोई किसी का हाथ में अच्छा होगा तो 8 महीना,
1: 8 महीने में
2: 8 महीना में 45-50 हो जाता है। और 45-50 होने के लिए कोई खाद में तो 1.5 साल लग जाता है, 1.5 ईयर्स,
1: जी
2: और कोई 2 साल भी 2 साल भी लग जाता है।
1: जी बिल्कुल।
2: इसके लिए मतलब अच्छा पोर्शन अच्छा होगा तो 1 साल में भी पूरा अच्छा बिकने भी होता है, खराब होगा तो 1-2 साल में भी एकदम मेकअप नहीं हो जाता है।
1: जी, आपकी बातों से और एक सवाल मन में आता है, क्योंकि हम लोग जब सुअर पालते हैं, हम लोग सुअर पालते हैं बिजनेस के लिए, इनकम के लिए। अगर आप सुअर का जो छोटा बच्चा होता है, वही बच्चा चुनने में आप लोग कैसे चुनते हैं? क्योंकि आपको तो ग्रो करना है, पालना है, बड़ा करना है ना, तो इसमें आपको कैसे आप लोग बच्चा चुनते हैं जो ये बड़ा होगा?
2: ये बात भी है, इसमें 2 किस्म का है। हम लोग जैसे हम लोग एरिया में चलता है, लोकल भी है, एक तो फार्म भी होता है,
1: जी,
2: तो एक तो मतलब क्रॉस भी है।
1: जी
2: हम लोग जैसे ज्यादा क्रॉस चलाता है, आधा लोकल आधा फार्म, ऐसे मिक्स वाला।
1: जी
2: बच्चा को पालने के लिए लेने का पहले हम लोग इसका माई को देखता है।
1: जी
2: माई तो तगड़ा मोटा लंबा,
1: जी
2: इसको देखे तो बच्चा भी बाद में बड़ा होगा, लंबा होगा, अच्छा वजन मिलेगा,
1: जी
2: बिक्री करने में भी फायदा होगा, माई का भी देखने लगता है। क्योंकि माई अच्छा से खाना खाने वाला बच्चा तो अच्छा से खाना खाएगा,
1: जी
2: सोच के
1: जी
2: हम लोग वही सोच के हम लोग खाली एक गोर में स्वर देखा, अच्छा लगा, प्यार लगा, ऐसे नहीं लेता है। हम लोग कम से कम 4-3 गोर देख के पूरा कंपेयर करके
1: जी
2: हम लोग ऐसे चुन के लेता है,
1: जी
2: अच्छा अच्छा अच्छा वाला।
1: तब तो जाके आपको 8 महीने या 10 महीने में 45 से 50 किलो हो जाता है।
2: हाँ हाँ
1: जी बिल्कुल। ये जो आप सुअर के बच्चे जब खरीदते हैं, तो इसमें कभी कभी देखा गया है कि बाजार में भी मिलता है, लोकल मार्केट में भी दुकानदार लोगों लेके आता है छोटा छोटा लंखे में डाल के।
2: हाँ हाँ
1: तो ये जो बाजार वाला और आप जो बोले गांव का, इसमें अंतर क्या है?
2: सुअर जो पलेगा तो हमारा एरिया का लेना ही है, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है। दूसरा, गर्म जगह से लेके आ के ठंडा जगह में पलेगा तो तगड़ा नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, खाना भी नहीं खाएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, बीमारी पकड़ेगा, कृमि ज्यादा हो गया, कृमि।
1: जी
2: इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लेके इधर में नहीं पलता, क्योंकि इधर का ही इधर का लेके हम लोग पलता है, ये तो मैच होता है।
1: जी
2: बाहर का तो लेके आए के इसका क्लाइमेट का वजह से सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरता है, इसलिए हम लोग नहीं चलाता है बाहर।
1: वही आपको डिफरेंस है लोकल और बाहर के अंदर में।
2: हाँ हाँ
1: जी, तो खरीदने में कौन सा सस्ता होता है बच्चा, लोकल या बाहर का वाला?
2: सस्ता तो बाहर का सस्ता है,
1: जी
2: क्योंकि ये लोग तो बिजनेस का हिसाब से हम लोग को बेचना है।
1: जी
2: लेकिन हम लोग बिजनेस का हिसाब से बच्चा को भी नहीं लेना है,
1: जी
2: बाद में हम लोग फिर पाल के ग्रो होके अच्छा होके अच्छा दाम मिलने के लिए
1: जी
2: हम लोग बच्चा को देखने पड़ता है, बोल के हम लोग लोकल में ज्यादा यूज करता है मतलब।
1: जी बिल्कुल।
0: तो मैंने जैसे कि कहा है कि 2-3 वैरायटी का स्वर होता है,
2: जी,
0: तो वो वैरायटी को कैसे पहचाने, जैसे कि कोई क्रॉस ब्रीड है, कोई लोकल है, कोई फार्म का है, जो नए किसान है वो कैसे उनको आइडेंटिफाई करे कि ये क्या टाइप का है?
2: लोकल 2-3 वैरायटी है, इसमें से कैसे पहचानेगा? लोकल का तो जैसे मुंह तो ऐसे चुका होगा,
0: अच्छा
2: और इतना बड़ा लंबा भी नहीं होगा,
0: अच्छा
2: लोकल टाइप छोटा होगा,
0: अच्छा अच्छा
2: इसको
0: अच्छा
2: पचनेगा, और इसका कान भी इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा होगा,
0: अच्छा
2: बेलाती जैसे नहीं होगा। इसको देखे तो हम लोग लोकल है मालूम हो जाता है।
0: अच्छा,
2: लेकिन क्रॉस ब्रिड जो होता है, इसको बदन में दागी होगा, आधा सफेद होगा, आधा काला होगा।
0: अच्छा।
2: और मुख तो एकदम पूरा तेरा तेरा जैसे लगता।
0: अच्छा।
2: और इसका नाक भी पूरा सको सको बड़ो बड़ो टाइप होता है इसका नाक।
0: अच्छा।
2: जो रबर टाइप का जो होता है, और कान भी थोड़ा लंबा बड़ा होता है।
0: अच्छा, तो मतलब देख के उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा किस वैरायटी का है। जी, तो ये तो हो गया किस्मों के बारे में बात। अगर हमारे डिमा हसाओ जिले में, जैसे कि ये जुलाई महीने में बहुत ज्यादा गर्मी हुआ है,
2: जी
0: तो इस गर्मी के सीजन में स्वरों को कुछ दिक्कत होता है?
2: दिक्कत होता है, मतलब गर्म तो होता है, लेकिन इसीलिए हम आगे में बताया कि इसका गौर आधा धूप सीखना है, आधा चाया रखना है।
0: अच्छा।
2: तो गर्म ज्यादा होगा तो चाया का अंदर में हो जाता है, और ठंडा होगा तो बाहर में हो जाता है, मैनेज हो जाता है।
0: अच्छा।
2: और प्लस क्या करना है, इसका घर जैसे बनाना है, थोड़ा ऊंचा तरफ में, थोड़ा पहाड़ी तरफ में, हवा लगने का जगह में इसका घर तो बनाना है। इसलिए इसका मच्छर भी ना होगा, और शाम को भी हवा अच्छा मिलेगा,
0: हाँ,
2: दिन को भी हवा लगेगा, तो
0: अच्छा
2: मैनेज हो जाता है इसमें।
0: अच्छा, सुअरों को भी तो रोग लगते होंगे, तो
2: हाँ।
0: कौन सा सीजन में, गर्मी का सीजन में ज्यादा बीमार होता कि ठंडा का सीजन में?
2: बीमारी तो गर्म में भी नहीं है, ठंडा में भी नहीं है, लेकिन इसका डाइट में से बीमारी शुरू होता है, क्योंकि इसका अंदर में जो कृमि ज्यादा हो जाता है,
0: अच्छा
2: इसमें से इसका बदन तो दुबला होते रहता है। और वैसे आदमी जैसे सर्दी बुकाम जुकाम ये सब बुखार ये सब तो नहीं है, ठंडा गर्म तो नहीं है,
0: अच्छा
2: लेकिन इसका क्या है, खाना ठीक से नहीं खाएगा, सोते रहेगा, और उठने का दिल नहीं करेगा, सुस्ती लगेगा,
0: अच्छा
2: खाना ऐसे थोड़ा थोड़ा खाएगा, इसका बीमारी तो वही है। गर्म होगा सर डेगे गर्म होगा, ये है वो तो इतना नहीं है।
0: अच्छा
2: इसका दाँत का ख्याल रखना है, और हो सके तो सामने वाला वेटनरी भी जाके इसका विटामिन वगैरह, इसका बदन का कुछ इसका कहानी बता के, स्वर का ऐसे ऐसे होता है, खाना ठीक से नहीं खाता है, सुस्ती होता है,
0: अच्छा
2: सोते रहता है, तो वेटनरी का डॉक्टर से कुछ बोलेगा तो ये लोग दवाई भी दे सकता है।
0: अच्छा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुअर को स्वाइन फ्लू का वायरस लगता है।
2: सुअर में इसका स्वाइन फ्लू होता है, जो इसका बीमारी दिल का अंदर का मांस का बीमारी है।
0: अच्छा।
2: सुअर का मांस खाने से आदमी को बीमार पकड़ता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है।
0: हाँ।
2: इसका मांस में कुछ बीमारी हो जाता है, हम लोग देखने नहीं सकता, तभी भी बीमारी अलग टाइप का होता है। सुअर तो बीमार भी होता है, खाना ठीक से भी नहीं खाता, लेकिन वो तो अलग टाइप का बीमारी है। सुअर को मतलब मच्छर लग के आदमी को फिर लगने से भी स्वाइन फ्लू हो जाता है, ऐसे बोला ना।
0: अच्छा,
2: बस्ती बस्ती में, इसलिए घर से कम 20 meters दूर में सुअर का घर बनाना जरूरी है, और शाम शाम को इसका घर का नीचे में धुआं तो जलाना है मच्छर भगने के लिए।
0: अच्छा।
2: सुअर का मीट खाने से भी स्वाइन फ्लू हो जाता है।
0: अच्छा।
1: सुअर जो आप पालते हैं, तो सुअर की साफ सफाई भी बहुत जरूरी होता है, साफ सफाई आप किस तरह करते हैं, दिन में कितना बार करना पड़ता है?
2: हम लोग ऐसे तो इतना टाइम नहीं मिलता है, दूसरा काम भी है, तभी भी हम लोग का खाना देने का पहले इसका पेशाब, इसका पैखाना, ये सब हम लोग पूरा पानी से पूरा साफ कर देता है, और झाड़ू से पूरा इसका घर तो ब्रश मार के पूरा हटा के हम लोग पूरा साफ सुथरा रखता है, सुबह शाम खाना देने का आगे आगे।
1: कम से कम आपको दिन में दो बार करना पड़ता है,
2: करना पड़ता है। हाँ।
1: जी बिल्कुल। जब आप रूम साफ करते हैं, सुअरों को क्या बाहर में निकाला जाता है ना, रहते हुए रूम में साफ करते हैं?
2: नहीं, सुअर अंदर में रहेगा।
1: हाँ।
2: इसलिए हम आगे में बोला।
1: हाँ।
2: सुअर का इसका रूम भी थोड़ा बड़ा बनाएगा, इधर में सफाई करेगा, इधर में साइड हो जाएगा, इधर में सफा करेगा, फिर इधर में साइड हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल।
2: हाँ।
1: ये जो रूम का सफाई करते हैं, तो क्या सुअरों को भी कभी कभी नहाना पड़ता है?
2: हाँ हाँ, नहाने भी पड़ता है। बड़ा होगा तो 2-3-4 आदमी पकड़ने लगता
1: जी,
2: इसलिए छोटा टाइम में इसका मतलब पुका होता है इसका बदन में
1: जी,
2: पुका को हटाने के लिए भी छोटा टाइम में तो हम लोग 1-2 आदमी से लेके डेटोल सेटोल पूरा लगा के
1: जी,
2: हम लोग पूरा इसको पानी में नहा के अच्छा से बुसाई के हम लोग रखता है
1: जी,
2: तो छोटा टाइम में
1: जी,
2: बड़ा होगा तो नहीं सकेगा, लेकिन छोटा टाइम में कर दिया तो बड़ा टाइम में कहाँ से आएगा फिर
1: जी।
2: छोटा टाइम में अच्छा से देखभाल करने से
1: जी
2: अच्छा से ग्रो अप करेगा, अच्छा
1: ग्रो अप करेगा जी बिल्कुल। देखा गया है कभी कभी हमारे डिमा हसाओ जिले में भी देखे हैं, बाहर में भी देखे, सुअर दो कलर के होते हैं, एक सफेद होता है, एक काला होता है।
2: हाँ हाँ।
1: सफेद और काला में क्या कुछ खास अंतर है?
2: पूरा सफा होगा, लोकल में भी होता है, लेकिन इतना अंतर भी नहीं है, आदमी में भी थोड़ा काला होता है सफेद होता है ऐसे, लेकिन आदमी जैसे लोग भी ऐसे।
0: तो रियामी जी, आपका तो बहुत साल का एक्सपीरियंस है सुअर पालन का, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने जब सुअर पालन शुरू किया था तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला या फिर कैसे आपने स्टार्ट किया?
2: हाँ, मतलब हम लोग फोर फादर से ऐसे होते आता है।
0: अच्छा।
2: मतलब इनकम सोर्स के लिए भी पलता है, कुछ घर में कुछ पार्टी होगा तो दूसरा का लेने का बदले अपना का खुद से यूज कर देता है, और शादीशुदा में भी पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो बिक के भी बच्चे को भी एडमिशन कराता है।
0: अच्छा,
2: कुछ
0: अच्छा,
2: कुछ
0: अच्छा।
2: ऐसे हो जाता है,
0: इनकम पर्पस।
2: हाँ, इनकम पर्पस के लिए भी हो जाता है।
0: अच्छा,
3: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम

0: की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
1: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
1: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
6: तो श्रोताओ, किसानवाणी कार्यक्रम के तहत आज हमने बातें की है किस तरह निवाहासा जिले में स्थानीय तरीके से सुअर पाला जाता है, इसी विषय में। और इस जानकारी को बांटने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित थे निवाहासा जिले की स्थानीय किसान मैसिंग रियामे जी। तो मैसिंग रियामे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं से बांटे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
7: नमस्कार।
8: तो श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम को हम यहीं पर समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले हम सभी श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं, अगर आपके पास किसानवाणी कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी सुझाव हो, कोई भी परामर्श हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 03-673-299-05। और श्रोताओं, आप सीधे हमारे कार्यालय पर आकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय पर आने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। इसके साथ किसानवाणी कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली किसानवाणी कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं चुमकी
6: और मैं आपका दोस्त शांतनु मजुमदार आपसे इजाजत चाहते हैं।
8: नमस्कार।
9: किसान वाणी, प्रायोजक थे भारत सरकार की कृषि मंत्रालय।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। अब समय हो गया है टीचर्स प्रोग्राम का, तो चलिए सुनते हैं आज के टीचर्स प्रोग्राम में चाइल्डहुड एंड द जॉय ऑफ लर्निंग।

आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टीचर्स प्रोग्राम। श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कोमल और खूबसूरत विषय पर, चाइल्डहुड एंड द जॉय ऑफ लर्निंग, यानी बचपन और सीखने की खुशी। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक विशेष अतिथि, मैम वास्ति पंगोमते। वे रीगल वैली स्कूल हाफलॉन्ग की प्रिंसिपल है, जो बच्चों की शिक्षा और उनके समग्र विकास से जुड़े हुए हैं। आइए बिना किसी देरी

0: ये शुरू करते हैं आज की ये खास बातचीत। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो पे।
1: थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए।
0: जी मैम, तो हमारे जैसे कार्यक्रम का विषय हमने पहले बता दिया है, तो उससे जुड़ के मैं पहली चीज़ तो आपसे यही पूछूंगी कि जैसे आज के समय में सीखने की खुशी यानी जॉय ऑफ लर्निंग का बच्चों के लिए क्या अर्थ है?
1: इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक लाइन बोलूंगी जो इंग्लिश में है, लाइक आई वॉन्ट टू एंड आई हैव टू, में बहुत फ़र्क है। जैसे एक बच्चे, मान लो मुझे स्कूल जाना है,
0: जी
1: शायद उसको स्कूल जाना पसंद भी नहीं है, उसमें वो उत्सुकता भी नहीं है, लेकिन उसको जाना ही है,
0: जी
1: वो मिस नहीं कर सकता है पेरेंट्स के डर से या जो भी हो। लेकिन अगर एक बच्चा बोले कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, उसमें बहुत फ़र्क है।
0: जी जी
1: तो इस सवाल का जवाब, जैसे अगर बच्चे सबसे पहले उनका सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन एक मोड होता है स्कूल से, तो उस पे स्कूल का भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक बच्चे में वो उत्सुकता लाने के लिए द स्कूल हैज़ टू बी वेलकमिंग। जैसे
0: बिल्कुल
1: अगर प्रिपरेटरी स्कूल में स्टार्ट करते हैं तो वो मोस्टली प्ले बेस्ड मेथड में हम लोग सिखाते हैं, लेकिन जैसे बच्चों के कक्षा बढ़ते जाते हैं, सब कुछ प्ले बेस्ड मेथड में नहीं हो सकता है।
0: जी जी
1: लेकिन हम लोग जैसे हमारे स्कूल में कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ। जब हम सिलेबस बनाते हैं, लाइक छोटे क्लासेस, लाइक मान लो प्राइमरी क्लासेस क्लास 3, क्लास 4,
0: जी
1: तो वहाँ पे मान लो 20 चैप्टर्स हैं।
0: हम्म,
1: 20 के 20 चैप्टर्स हम लोग नोट रटवा के, नोट्स दे के नहीं सिखाते हैं। हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कौन सा चैप्टर प्ले बेस्ड में जाएगा, कौन सा चैप्टर डिस्कशन बेस्ड होगा, कौन सा चैप्टर लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और कौन सा चैप्टर से जहाँ पे बच्चों को नोट्स लिखना भी सिखाया जाएगा।
0: जी,
1: जैसे एक चैप्टर है क्लास 3 पे, लाइक हेल्दी ईटिंग। मान लो हमारा बेसिक न्यूट्रिशन इंसान को जो चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर। वहाँ पे किताब में बहुत थियोरेटिकली लिखा गया है। क्लास 3 का बच्चा कितना थ्योरी पढ़ेगा, कितने नोट्स लिखेंगे। जब हम ये चैप्टर प्लान करते हैं, पूरे हफ्ते हमारा खाने पे होता है। हर दिन जैसे कि बच्चों को बताया जाएगा, पूरे हफ्ते हम लोग हेल्दी ईटिंग पे सीखते हैं, हमारा खाने पे, जैसे कि मेन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और फाइबर होना है।
0: जी
1: तो उनको ऐसे प्लान करके हम लोग दे देते हैं कि जब वो लोग लंच खाते हैं, हमारा सोशल साइंस क्लास चल रहा है, जैसे कि उनको पूछते हैं तुम्हारा कार्ब सोर्स क्या है, तुम्हारा फाइबर कौन सा है। तो वैसे करके बच्चे एंजॉय भी करे, सीख भी रहे, और मेरे ख्याल में शायद ये और वो लोग भूलेंगे भी नहीं।
0: जी जी मैडम, उसको मतलब वो लोग अपने लाइफ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: जी, तो मैम जैसे आपने कहा है बच्चों को पढ़ाते समय चैप्टर बेस्ड हिसाब से उनको एक्टिविटीज कराया जाता है, तो ये सब एक तरफ से मिला के जब बच्चों को खुद से लिखने या अपनी बात खुलकर रखने का मौका मिलता है तो उनके विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
1: मुझे लगता है स्कूल को हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रिमिटिव वे ऑफ एजुकेशन अभी चेंज होना है। जैसे अभी भी बहुत स्कूल अपना रहे हैं कि बस नोट रट लिया, समझ में आए नहीं आए बस रट लिया, एक पैरट लर्निंग जो बोलते हैं,
0: जी जी
1: और उसको वो लोग जाके छाप लेते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल करूँ तो कुछ भी नहीं आता
0: नहीं
1: है।
0: आता है
1: जो मेथड में हम हमारे स्कूल में अपनाते हैं उसे ही मैं जुड़ के बता सकती हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: जैसे एक चैप्टर्स हम लोग कर रहे थे छोटे क्लास के साथ, क्लास 2, सेफ्टी रूल्स। जैसे अगर देखोगे थियोरेटिकली, डू नॉट रन ऑन द रोड, डू नॉट पुश अदर्स, स्टे अवे फ्रॉम फायर, ऐसा कुछ दिया गया है, बस उनको रटना है, डू नॉट ऐसे
0: जी
1: करके। लेकिन उनको हम लोगों ने सवाल करना शुरू किया, क्यों ये क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे एक बच्चे को मैंने पूछा कि हमने तुमको बताया है कि लाइक स्ट्रे एनिमल्स, चाहे कुत्ते या जो भी कुछ हो सड़क पे, उनको नहीं छेड़ना है, बस यहाँ तक सीमित है। लेकिन मुझे जानना है एक बच्चा क्या जवाब दे रहा है ना।
0: जी
1: हर बच्चा अलग जवाब दे रहा है और हर बच्चे का सही जवाब है, तो उनको वो इमेजिन करने का राइट क्यों नहीं दिया जाएगा। एज अ स्कूल, एज अ टीचर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप दैट क्रिएटिव थिंकिंग। तो मुझे लगता है कि बच्चों को खुद से आंसर लिखना, खुद से इमेजिन करना, इसका एनकरेजमेंट हमें करना चाहिए। क्योंकि एज अ टीचर ऑल्सो समटाइम्स हमसे ज़्यादा बढ़कर अच्छे जवाब बच्चे खुद दे देते
0: जी
1: हैं।
0: मैडम, बिल्कुल ये सच बात है। तो जैसे अभी आपने कहा मैम बच्चों को खुद से लिखने की एक चांस दिया जाता है उनको, तो ये एक तरह से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनके लिए। तो अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती है जैसे किसी एक्टिविटी या असेंबली में भाग लेना, तो उनमें एक अलग सा आत्म

0: विश्वास आता है, तो इसको आप कैसे देखती हैं?
1: आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्कूल से पहले घर में शुरू होना चाहिए।
0: जी,
1: कई बार पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते समय मैं बोलती हूँ कि स्कूल सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, स्कूल एक ऐसे जगह है जहाँ पे बच्चों को इंडिपेंडेंटली खड़े होना सिखाया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। व्हेन आई सी लाइक लो कॉन्फिडेंस चिल्ड्रेन और उनके पेरेंट्स से मैं जब इंटरेक्ट करती हूँ, उनको मैं बोलती हूँ कि बच्चों को घर पे जिम्मेदारी या कुछ भी काम हो उस पर भाग लेने का एनकरेजमेंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा क्या होता है, हम पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे बच्चे कर पाएंगे।
0: जी जी जी
1: और एक चीज़ है कि हम लोग कॉन्फिडेंस बच्चों में बिल्ड नहीं कर पाते क्योंकि वी आर इम्पेशेंट। पेरेंट्स और जो बड़े हैं, हम लोग बड़े इम्पेशेंट हैं। अगर बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉन्फिडेंस सिखाना है तो सबसे पहले बड़ों को पेशेंस बिल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लो मुझे मेरे बच्चे को कहीं बाहर लेके जाना है। माँ बाप क्या करते हैं, आपके बच्चे 4-5 साल के भी हो गए, आप कपड़े डिसाइड करोगे, आप शूज डिसाइड करोगे।
0: हाँ, जी जी।
1: लेकिन आप जब बच्चे को बोलोगे, अगर आज मान लो हम मार्केट जा रहे हैं, तुम क्या कपड़ा पहनना चाहते हो, तुम चूज करो। बच्चे को क्या लगेगा कि यार मेरा मम्मी मुझ पे विश्वास कर रहा है, अपना खुद का कपड़ा चूज करने दे रहा है। हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बच्चे के लिए क्या है, वो डिसीशन उसके लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है।
0: जी।
1: एंड सिमिलरली, जैसे हमारे स्कूल पे हर दिन एक रोटेशन पे असेंबली होता है, और असेंबली में हम लोगों का बच्चों का होता है, दे हैव टू नरेट अ स्टोरी, स्टोरी नरेशन होती है, फिर उसके बाद स्पीच, न्यूज रीडिंग, और ये सब देखिए बड़े भी हम लोग जब किसी 10-20 लोगों के सामने भी हमें बोलने में बहुत झिझक होती है।
0: बहुत ज़्यादा।
1: देख लीजिए, ये प्रयास के जरिए हम लोग क्या देख रहे हैं, बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। गलती भी करते हैं एंड हम लोग उनको कहते हैं कि मिस्टेक्स आर फाइन, लेकिन हम उनको कैसे सीखते हैं। और मान लो जैसे असेंबलीज या स्टेज पे गलती करना, वैसे कई बार क्या होता है, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा जाता है। ओ माय गॉड, मेरा माइक नहीं चढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ा जोर से बोलूंगी, मेरा पर्ची गिर गया। कोई बच्चे होते हैं कि लाइक शेक करके वो लोग पता नहीं कि क्या करेंगे, हम बोलते हैं उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक्चुअली असेंबलीज या स्टेज के सामने जब बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हैं।
0: बहुत, जी जी, सच बात है मैडम ये।
1: और मान लो जैसे इसमें टीचर का रोल बहुत बड़ा है, अप्रिशिएट करना है कि हम लोग हमेशा मानते हैं हमारे स्कूल पे एक मोटो है, मिस्टेक्स आर ओके, इट्स फाइन, सीखना है। एक बार गलती हुआ, दो बार गलती हुआ, तीन बार गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं।
0: जी।
1: और वो अगर एज अ टीचर मैं बोलूँ तुमने ऐसा गलती क्यों किया था, मैंने तुमको इतना सिखाया था, तुमने ऐसा क्यों किया, यार बच्चे का कॉन्फिडेंस तो पूरा गया ना, कभी और नहीं कर पाएगा वो। लेकिन हम क्या करते, तो इसलिए दे आर कॉन्फिडेंट, गलती हो जाते कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट टाइम। एंड ऐसे करते करते बहुत आफ्टर सेवरल चांसेस उनका इम्प्रूव हो रहा है। और टीचर्स क्या करते हैं, हैंड होल्डिंग, गलती हो गया इट्स ओके, हम है ना, हम सिखाएंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं, टीचर जाके खड़े हो जाते हैं, हाथ पकड़ लेते, इट्स ओके, टेक योर टाइम। तो ये रोल कौन निभा रहा है, एक टीचर निभा रही है।
0: टीचर, जी जी मैम, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो मैडम, ऐसे करने पे बच्चों पे एक लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
1: लीडरशिप क्वालिटी अलॉन्ग विथ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्कूल पे बिल्कुल बिल्ड होना है। जैसे कुछ हम लोग हमारे स्कूल पे क्या करते हैं, बच्चों को ग्रुप्स में बांट देते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज, बहुत कुछ ग्रुप में कंपटीशंस होते हैं, हेल्दी कंपटीशंस, और उनको ट्रेन किया जाता है। एक लीडरशिप स्किल्स, एक क्या होता है, लोगों को हैंडल करना, है ना, जो बच्चों को सीखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ एक ग्रुप में एक लीडर है, लीडर क्या कर रहा है, एक बच्चे को उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देना,
0: जी,
1: ये सीख रहे हैं। और उन पे क्या है, सीख रहे बच्चे कि हर लोग अलग अलग होते हैं। जैसे अगर कुछ मेरा मान लो एक फंक्शन है, मेरे अपना एक 2-3 लीडर्स स्टूडेंट्स को चूज किया, ये ऐसा रेडी होना है और ये तैयार करो, कैसे करना है, यू कैन वर्क ऑन योर ओन। हम लोग ऐसे करके करते, अगर गलती हो गया फिर हम लोग रेक्टिफाई करते, लेकिन उससे पहले हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। एंड कई बार दे आर डेवलपिंग सच गुड लीडरशिप स्किल्स, हमसे ज्यादा बेहतर किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। बट लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने से पहले हम में विश्वास होना है कि दे कैन डू इट, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की भी हिम्मत होनी चाहिए।
0: बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की भी और साथ ही साथ पेरेंट्स की भी। तो मैम, अभी हमने बहुत सारी बातें की बच्चों की जो क्वालिटीज है उनके पर्सनैलिटी को लेके, पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चों को संगीत या शारीरिक गतिविधियों का भी हिस्सा बनाया जाए तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ता है?
1: एजुकेशन सिर्फ किताब पे निर्भर नहीं हो सकता है, एंड आई थिंक हम लोग और भी रियलाइज कर रहे हैं कि खेलना, कूदना, संगीत, नाच, ये सब

0: सिर्फ शारीरिक नहीं, इवन फॉर द माइंड.
1: जी जी.
0: इट हेल्प्स इन बिल्डिंग लाइक कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचना, यू नो, लाइक कॉन्सेंट्रेट करना. इनके लिए बहुत ही एक मध्यम है, यू नो. कई बार कम उम्र के बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, तो उनके लिए एक मीडियम हमें भी ढूंढना है. किसी को म्यूजिक पसंद हो सकता है, किसी को खेल कूद पसंद हो सकता है, किसी को डांस पसंद हो सकता है. एक चीज़ जो मैं एनकरेज करती हूँ, एंड आई हैव सीन वंडरफुल रिजल्ट्स, बच्चे जब मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं हम म्यूजिक बजाते हैं. एंड ये बहुत ही अमेजिंग टूल है टू डेवलप कॉन्सेंट्रेशन इन अ चाइल्ड. म्यूजिक इस किसी के लिए एक डिस्टर्बेंस के मोड हो सकता है, बट वी हैव डेवलप आवर चिल्ड्रेन इन सच वे. मैथ्स प्रैक्टिस करना है तो म्यूजिक चला के प्रैक्टिस करते, म्यूजिक बैकग्राउंड पे चल रहा है, लेकिन दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सॉल्विंग द सम. एंड ये इनका कॉग्निटिव एबिलिटी बिल्ड कर रहा है, ब्रेन. ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है. एक बच्चे के लिए शायद डिस्ट्रैक्शन बहुत डिस्टर्बेंस होगा, एक के लिए बहुत एंजॉयमेंट होगा. चाहे जैसे भी हो, लेकिन अल्टीमेटली दे स्टार्ट एंजॉयिंग द म्यूजिक एंड दे बिल्ड दैट स्किल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर डूइंग. तो ये ब्रेन के लिए वंडरफुल है. आई थिंक अगर कोई सुन रहा है तो ट्राई कीजिए.
1: जी जी मैम, बहुत अच्छा लगा ये जो तरीका है. मैं आशा करती हूँ हमारे श्रोताओं के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो मैम, अभी हम धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुँचने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपसे आखिरी चीज ये जानना चाहूंगी कि अगर बचपन से ही सीखने का अनुभव जॉयफुल रहे तो आपके हिसाब से इसका बच्चों के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा?
0: इसका जवाब जैसे मैंने कहा था, आई वॉन्ट टू एंड आई हैव टू पे होता है. मान लो एक बच्चा को बचपन से ही, हमने हमारी उम्र में क्या देखा है कि बच्चा हर रोज स्कूल जाने से पहले रो रहा है. जो बच्चा हर रोज स्कूल जाने से पहले रो रहा है, जाना ही नहीं चाहता है, सारा दिन 60 घंटे 6 घंटे स्कूल पे बैठ के, तो उसका दिमाग तो कहीं और है ना. एंड आई एम श्योर शायद कोई बच्चे तो बहुत आगे जाके कुछ भी कर लेते होंगे, लेकिन अगर एक बच्चा, उसको पूरा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है स्कूल को एंजॉय करने का, तो आई एम श्योर वो बहुत फ्यूचर के लिए बहुत ही काम आने वाला है. कि स्कूल जो सीखने का मौका है, उसको हेट करते हुए वो नहीं बैठ रहा है, उसको एंजॉय करते हुए, उसको हर मोमेंट को लीव करते हुए, एंजॉय करते हुए सीख रहा है, तो आई एम श्योर उसका फ्यूचर करियर या फ्यूचर प्लान जिसमें भी है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है.
1: जी जी मैम, ये बहुत सच बात है कि अगर वो लोग खेल खेल में सीख लेते हैं तो उस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं और फ्यूचर में वो काम भी आता है.
0: और एक लाइन में ऐड करना चाहूँगी, जैसे हम स्कूल में जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं, हम उनको पूछते हैं सबसे पहले, हम लोग जिंदगी के लिए सीख रहे हैं या एग्जाम्स के लिए. अगर बच्चों में जिंदगी के लिए सीख रहे ये चीज़ अगर हम उनमें डाल दिया ना, तो उनके लिए एग्जाम्स बिकम्स वेरी इजी. तो जिंदगी के लिए पढ़ना, आई थिंक दिस इज व्हाट वी शुड ट्राई एंड डेवलप इन स्कूल्स रादर देन स्टडिंग फॉर एग्जाम्स.
1: तो मैम, आपके ओवरऑल बातों से हमें ये पता चला है कि आप जो ये चाइल्डहुड एंड जॉय ऑफ लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत मानती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये बहुत इफेक्टिव है हमारे बच्चों के लिए. और आशा करती हूँ हमारे श्रोताओं को भी हमारी जो बातचीत है बहुत अच्छी लगी होगी और ये उनके लिए हेल्पफुल भी होगी. तो मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पे आई, हमसे बातचीत की, इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम.
0: थैंक यू सो मच अंकिता.
1: तो श्रोताओं, आज की इस रोचक चर्चा से हमें ये समझने का मौका मिला कि बचपन में सीखने का अनुभव सिर्फ पढ़ाई तक सीमित.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे टीचर्स प्रोग्राम. इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है. अब समय हो चला है समाचार संध्या का, जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे.
3: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती. बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा. आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार. ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा. तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी. अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु. प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया. प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरु मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ. ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन

0: समारोह में भारत की ध्वज वाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन से पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान इसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन बाली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुंठ विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम वन भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम वन में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम वन से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
5: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
6: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
5: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन एमसी सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद

0: बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब समय हो गया है आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम हेलो हाफलोंग का। तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज के हेलो हाफलोंग पेश कर रहे हैं सिद्धार्थ पांडे।
2: आपकी गीत दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलोंग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुठाई ची बाई कुलुम खुबले कार्डो। आकाशवाणी हाफलोंग की ओर से मैं सिद्धार्थ पांडे लेकर हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा और प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो हाफलोंग। एक हफ्ते के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए चलिए इस हफ्ते के सफर को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हाफलोंग,
1: जिला वार्ड क्रमांक 20 से बोल रहा हूँ सर। आपका अपना साथी सुरेश कुमार सारथी
0: जी। सुरेश जी, क्या हाल चाल है वहाँ का?
1: छत्तीसगढ़ में अभी हाल चाल क्या बताएं सर, बरसात तो दो चार दिन झड़ी पानी गिर कर थम गई है और उमस और गर्मी तेज हो गई है सर।
0: गर्मी से बच के रहिएगा। क्या सुनेंगे आज?
1: जीवन में कुछ भक्ति भावना भी होनी चाहिए सर, और भगवान की पूजा पाठ होनी चाहिए। और कल है रथ यात्रा जिन्हें हम श्रद्धा पूर्वक पूरा भारत वर्ष में मनाते हैं सर। हार्दिक शुभकामनाएं आपके केंद्र के पूरी यूनिट को सारथी परिवार की ओर से। और सर भक्ति भावना वाला ही गीत सुनना चाहूंगा सर। सरगम फिल्म का है, मोहम्मद रफी की आवाज में। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी

0: हेलो हफलोंग,
1: मैं रमेश पात्र गोलाघाट असम से बातें कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं रमेश जी? आप
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ।
0: अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैं एक टीचर था, अब रिटायर हुआ हूँ, घर में रहता हूँ,
0: जी
1: बच्चों को पढ़ाता हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है।
1: हमारा रिक्वेस्ट है, जीना है तो हंस के जियो, ये थानेदार मूवी का सॉन्ग है, और एक गीत को डेडिकेट करता हूँ। मेरा श्रीमती है रोनू पात्र,
0: जी
1: बेटा है दीपांकर पात्र, पोती है लाकी, और हमारे साथी लोग है भाईकोन मुंडा, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी और हितेंद्र दास।

0: हेलो हफलोंग
1: जी, मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ, रंगापारा सोनीतपुरा असम से। सर बहुत
0: जी, बताइए कैसे हैं आप।
1: अच्छे हो। बारिश दे रही थे, अभी बारिश खुल के अभी धूप दे रहे हैं।
0: गर्मी के दिन
1: और
0: में आपको बारिश का आनंद मिला, खुश है ना।
1: जी, आज मैं इंग्लिश बाबू डीसी मैम फिल्म का गाना सुनना है, दीवाना मैं तेरा दीवाना, ये गाना को सुनना है। दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा। सबसे पहले रमेश पात्रो, आइकॉन मुंडा, बिमल बसुमतारी और जोगेंद्र रंकी।

0: हेलो हाफलोंग।
1: जी सर जी नमस्कार, शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ सर
0: जी कैसे हैं आप और विदिशा कैसी है?
1: जी। हूँ और विदिशा भी ठीक है। इस समय बस बारिश का इंतजार हो रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है सर जी अभी।
0: विदिशा जो नाम है
1: गर्मी
0: आपके वहाँ का, उसके उसके पीछे का कुछ आप बता पाएंगे कि कैसे ये नाम पड़ा?
1: सर जी, ये पौराणिक कथाओं में जो अशोक सम्राट अशोक जी थे तो उनके परिवार के नाम से है, उनकी पत्नी या बेटी का नाम था सर, ऐसा बताते हैं लोग।
0: जी। अब क्या सुनेंगे आप?
1: सर जी मूवी का नाम रहेगा हम है राही प्यार के, और गाने के बोल रहेंगे सर जी वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो।
0: जी, इसी गाने को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप गाने का आनंद लीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।

0: हेलो हाफलोंग,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। किन से बात हो रही है
1: आपका नियमित श्रोता धीरज जबारी से बात हो रही है सर।
0: जी? लवाड़ी जी, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे और आप लोग सभी अच्छे होंगे।
0: बहुत मस्त हैं और आपकी सेवा में हाजिर हैं। बता दीजिए कि किस गाने की धुन को आप तक पहुंचाएं।
1: गाना सुनना है अखियों की जरूरत से फिल्म का और शीर्षक गाना है, अमृता जी ने गाया है और आप लोग जो ये फोन इन कार्यक्रम है हमें बहुत पसंद है। एक पौने घंटे के बजाय एक एक घंटा शनि रवि दिया जाए, ये फोन इन कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है, यही हमारा सुझाव है सर।
0: जी, हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के चंक को और बढ़ाया जाए, और अगर और ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता जुड़ेंगे तो हम डेफिनेटली इसको और लंबा करेंगे।
1: जी
0: और
1: सर, हम कोशिश करेंगे और श्रोताओं को भी हमारी ये जानकारी हम श्रोताओं को देंगे कि भाई आप
0: जी
1: लोग फोन इन कार्यक्रम आता है तो इस पे कॉल कीजिए, क्योंकि ज्यादा श्रोता बढ़ेंगे इसमें हमें जानकारी भी ज्यादा मिलेगी सर।
0: जी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी एक कोने के श्रोता दूसरे कोने के श्रोता के साथ परिचित होंगे, है ना? चलिए, और आपके सुझाव के लिए भी शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: हाँ भैया नमस्ते। योगेश
0: नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
1: जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ जी
0: जी योगेश जी, आप अच्छे हैं ना?
1: एकदम बढ़िया है। हाँ
0: रेडियो नियमित रूप से सुनते हैं?
1: जी
0: आपका कौन सा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है रेडियो में? किस तरह के
1: हाँ
0: कार्यक्रम को आप
1: जी
0: ज्यादा पसंद करते हैं?
1: फोन इन कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि इसमें अपनी बातें भी पहुंच जाती हैं और गाने भी। जी
0: बहुत बढ़िया। आप बताइए, कुछ बाकी के जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप क्या बताना चाहते हैं?
1: यही भी है कि कार्यक्रम सुने और अपने पसंद के गाना सुनना चाहते हैं तो सभी साथी भी फोन करें क्योंकि लाइन सबके लिए रहती है।
0: बहुत बढ़िया। आपकी फरमाइश क्या है?
1: फिल्म धर्मात्मा से सुनवा देंगे, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।

0: हेलो हाफ लॉन्ग।
1: हेलो। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, किनसे बात हो रही है?
1: जी सर, हम धेमाजी असम से बिमोल बसुमतार बोल रहे हैं सर।
0: जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, कैसे हैं आप?
1: जी सर, हम ठीक है। आज खेती का टाइम है ना, खेती पथार में है, पथार से बोल रहे हो सर।
0: चलिए, पथार में हैं तो क्या बारिश अच्छे से हो रही है खेत के कामों में?
1: बारिश सर आपको आया था, अभी पानी थोड़ा कमती है, मशीन से भी थोड़ा पानी डाल के लगाया।
0: कि आजकल आप लोग खेत की जुताई कैसे करते हैं, हल चलाते हैं या ट्रैक्टर से हो जाती है?
1: जी सर, हम लोग आजकल थोड़ा ट्रैक्टर से ज्यादा करने लगा, फिर किसी का ये गोरु से भी हल मारता है, फिर आजकल ज्यादा सब ट्रैक्टर से, हैंड ट्रैक्टर से भी मारता है, बड़ा ट्रैक्टर से भी मारता है सर।
0: जी, और जो आप धान लगाते हैं वो कौन सा धान होता है?
1: ये हम लोग बहुत धान है सर, अभी मैं जो लगा रहा है ये बास बोलता है, बास धान बोलता है, और हाली धान ये बड़ा चावल बोलता है ना, आसाम से उसको भी लगाता हूँ।
0: जी, जिसका पीठा बनता है।
1: जी हम लोग ये बिहू में सही है ना सर, पिता कुछ बनाने के लिए उसको भी लगाता है।
0: जी
1: बस हमको सर कोयला फिल्म का सुना दीजिए, तन्हाई तन्हाई ये गाना सुनना चाहते हो सर।

0: हेलो हफलोंग
1: सर, तरुण सिंह हूँ।
0: जी। तरुण सिंह जी, क्या कर रही हैं आप?
1: बस मैं सर आजकल ठीक ठाक है। मैं आर्मी में हूँ, थोड़ा
0: जी,
1: बढ़िया चल रहा है। आज थोड़ा टाइम मिला तो फोन करने का याद आ गया।
0: आपकी पोस्टिंग कहाँ है?
1: अब इधर इधर ही है, बंगाल में हूँ।
0: तो आप बंगाल से बात कर रहे
1: बाकी
0: हैं। हमारे
1: ठीक
0: फौजी
1: ठाक
0: भाई
1: चल
0: भी
1: रहा है।
0: इस
1: बाकी
0: कार्यक्रम
1: क्या,
0: से जुड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और
1: रेडियो
0: रेडियो कितना सुनते हैं?
1: सर मैं मोबाइल ऐप के जरिए सुनता हूँ। मुझे मोबाइल ऐप से सुनाई दे रहा है, बस उसी में अच्छा लगता है।
0: जी, क्या सुनेंगे आज?
1: आज मैं सुनना चाहता हूँ सर, वो जो सपूत की तरह ना, उसकी फिल्म का नाम सपूत है।
0: जी बताइए, गाने के बोल बता दीजिए।
1: गाने का बोले, काजल काजल से आंखों का ये काजल।

दोस्तों इन्हीं रिक्वेस्ट सॉन्ग्स के साथ ही इस हफ्ते का हेलो हाफलों का पहला एपिसोड अब यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी के कॉल्स और गानों के साथ दूसरा एपिसोड लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। कल तक का छोटा सा कीजिए इंतज़ार, सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। और जाने से पहले आपको बता दें, हेलो हाफलोंग की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच। हमें कॉल करने के लिए नंबर नोट कीजिए, हमारा नंबर है 9435700596। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतज़ार। कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। अब अपने दोस्त सिद्धार्थ पांडे को इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरी ओर से जुठाई चिबाई कुलुम खुबलई कार्डम और मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
1: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
0: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग। अब समय हो गया है चित्रगीत कार्यक्रम का, तो आइए इस कार्यक्रम का सबसे पहला गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म अतरंगी रे का ये गाना, तुम्हें गाने के बोल है तुम्हें मोहब्बत।

0: मैं वो नहीं।
1: श्रोताओं, चलिए अगला गीत सुनते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का ये गाना, गाने के बोल आरको के हैं और इसे संगीत से सजाया है आदित्य देव ने। चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं भूल भुलैया फिल्म का, नीरज श्रीधर की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, ये था चित्र गीत का आखिरी गीत और इसी के साथ चित्र गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस समय स्टूडियो में रात के 10:14 हो चुके हैं। समय हो गया है आज की दूसरी सभा को यहीं पर समेटने का। आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 6:00। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय हिंद, शुभ रात्रि।